ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 4वीं तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सुर FM सन सिटी चैनल है। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

0: संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदनवार।

आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, हम महानता के करीब तब पहुंचते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

श्रोताओ, अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 199। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता में सुनिएगा श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। सुबह और रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। इसी कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। 10 बजे पिटारा में सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां भाग आप सुन सकेंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। 11 बजे होगा कार्यक्रम रंग तरंग। 12 बजे सुनिएगा यादों की महफिल।

दिन में 1 बजे सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर, 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी, 2:30 पर होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे, 3 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सखी सहेली।

शाम 4 बजे सेहतनामा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। आज डॉक्टर लीजा बैनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुनेंगे। विषय है थायराइड की बीमारी और उपचार। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन।

शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर आप सुनेंगे स्मृतियों के स्वर, अधिशासी लवलेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आज आपको सुनवाएंगे। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक यादों की परछाइयां, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आज इस नाटक का पहला भाग आप सुन सकेंगे। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक और 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को है। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्री राम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस श्रृंखला की कड़ी में जो कर्नाटक रागों के बारे में कुछ रोचक विषयों पर आधारित है, मैं ऐसे दो रागों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी जो मंगलम गाने में प्रायः उपयुक्त होते हैं। ये दो राग हैं सौराष्ट्रम और राग मध्यमावती। मंगलम एक ऐसा बंदिश या कॉम्पोजिशन है जिसे हर महफिल या बैठक के अंत में पेश किया जाता है। शास्त्रानुसार मंगलम गाए या बजाए बिना प्रोग्राम का समापन करना बहुत ही बुरा माना जाता है। मंगलम में प्रायः प्रार्थना होती है कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, और इस मंगलम को पेश करने की विधि ज्यादातर दो होते हैं। एक तो हुआ राग सौराष्ट्रम में त्यागराजा द्वारा रचित मंगलम कीर्तना गाने का, जिसके शब्द हैं पवमान सुतुडु बट्टु पादार विंद मुलकु नी नाम रूप मुलकु नित्य जय मंगलम। और दूसरी प्रथा है राग मध्यमावती का छोटा सा नमूना गाकर या बजाकर समाप्त करने का। कभी कभी तो दोनों ही करते हैं, अर्थात सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु बट्टु गाकर उसी के साथ अंत में एक छोटा सा टुकड़ा राग मध्यमावती में भी जोड़ देते हैं। अब आप सवाल करेंगे, ऐसा क्यों? राग सौराष्ट्रम और मध्यमावती को अंत में क्यों गाया जाता है और उन्हें मंगल राग क्यों माना जाता है? कारण जी ऐसा दिया जाता है कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती में स्वर जो लगते हैं, स्वर समूह इस तरह के हैं जिनसे मंगलमय माहौल उत्पन्न होता है और शांति होती है। अगर महफिल के दौरान कुछ ऐसे राग पेश किए गए हैं जिन्हें विवादी राग कहते हैं, यानी कि जिनके स्वर समूह अलग प्रकार के हों, तो उन रागों से उत्पन्न होने वाले चंचल और कम शांति वाले रस या सेंटिमेंट्स को मिटाकर शांति के साथ प्रोग्राम समापन करने के लिए मंगलम गाते हैं, ताकि श्रोतागण अपने कानों में इस मंगल रागों की गूंज के साथ घर लौटें। राग सौराष्ट्रम को कभी कभी प्रोग्राम के पहले आइटम में भी पेश करते हैं, लेकिन पवमान इस कीर्तन को शुरू में कभी भी नहीं गाया बजाया जाता है। पवमान के बाद उठ जाना चाहिए, और अगर पवमान गाने के लिए समय न हो तो कम से कम दो चार टुकड़े राग मध्यमावती में पेश कर दें और फिर खत्म कर लेते हैं। आज राग सौराष्ट्रम में पवमान स्तुडु मंगलम सुनाने से पहले मैं यह बता दूं कि राग सौराष्ट्रम 17वां मेलकर्ता सूर्यकांतम का जन्य राग है और हिंदुस्तानी पद्धति के आनंद भैरव से थोड़ा कुछ मिलता जुलता है। स्वर जो लगते हैं वे हैं कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद, अर्थात पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में

ये हुआ राग सौराष्ट्रम, जिसमें ज्यादातर मंगलम गाते हैं। राग मध्यमावती औडव राग है, जिसे हिंदुस्तानी पद्धति में मध्माद सारंग कहते हैं। इसमें लगने वाले स्वर इस प्रकार हैं: शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम और कोमल निषाद, यानी कि गांधार और धैवत वर्ज्य हैं, जैसे कि मध्माद सारंग में भी वर्ज्य हैं। मध्यमावती का चलन इस प्रकार है, सुनिए।

ये था कर्नाटक शैली में राग मध्यमावती। श्रोताओं, अब इस कड़ी के साथ कर्नाटक रागों के बारे में एक श्रृंखला का समापन करते हुए कल से पेश करूंगी महाराजा स्वाति तिरनाल के कुछ हिंदी भाषाओं में रचनाएं। तो अब सुनिए एमएस सुब्बलक्ष्मी के स्वर में मंगलम पवमान सुतुड़ु बट्टू, जिसके अंत में कुछ क्षणों के लिए राग मध्यमावती का भी झलक है। कल मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।

ये था एमएस सुब्बलक्ष्मी के स्वर में राग मध्यमावती। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती।

0: अभी आप सुन रहे थे एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत पद्धति के ऐसे रागों की चर्चा जिनसे जुड़ी हैं कुछ पुरानी मान्यताएं। आप तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी शकुंतला नरसिम्हन। कार्यक्रम को जारी रखते हुए शकुंतला नरसिम्हन कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा करेंगी कल से।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

फिल्म सती सावित्री का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मन्ना डे के युगल स्वरों में। भरत व्यास का लिखा ये गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में से गाया लता मंगेशकर ने। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। विविध भारती से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: फिल्म तकदीर का गीत था उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा तिमोथी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की
6: डोरी।

फिल्म साजन का दो गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के चंद और गीत आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद थोड़ा सा इंतजार।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

क्रोधी फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश।

FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देबांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर

0: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

प्रोग्राम का अगला गीत हमने लिया है सफर फिल्म से, आवाज है मुकेश की। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। इस खास शुरुआत के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी, और मेरे साथ मौजूद हैं
1: मनीषा जोशी बोहरा। दोस्तों, हर सुबह सूरज की पहली किरण अपने साथ एक नई सोच, नई दिशा लेकर आती है और साथ ही मौका देती है हमें जिंदगी में कुछ बेहतर करने का, आगे बढ़ने का।
0: दोस्तों, मौका खुद को बेहतर बनाने का, मौका कुछ नया सीखने का और मौका अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का। तो क्यों ना इस सुबह की शुरुआत करें एक मुस्कान के साथ, थोड़ी सी उम्मीद के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी हमारी तकनीकी टीम से।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम वही जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ और रखेंगे साथ में आपको अपडेट, और उसके लिए हम अपनी टीम का सहयोग लेते हैं। और हमारी टीम में हमारे साथ जुड़े हैं ट्रांसमीटर पर फारूक अहमद शेख और नरेंद्र सिंह राठौड़, कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं सुनील जयपाल, कंसोल पर हमारा साथ दे रही है नीतू। नमस्कार कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं राजेश लामरोड़, और कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास की। इसके साथ ही दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम का पहला गीत।

दोस्तों, आज मैं आपसे कोई खबर नहीं बल्कि कोई बड़ी जानकारी नहीं, बस एक एहसास बांटना चाहता हूँ। एक ऐसा एहसास जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन वक्त की भाग दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेड़ के कीमत की, जो हमें सिर्फ गर्मियों में समझ में आती है। श्रोताओं, कभी आपने ध्यान दिया है कि गर्मियाँ पहले जैसी नहीं रहीं? पहले भी सूरज इतना ही तपता था, लेकिन तब धूप इतनी चुभती नहीं थी, क्योंकि रास्तों में पेड़ों की छांव हमारे साथ चलती थी। अब सड़कें लंबी हैं, चौड़ी हो गई हैं, इमारतें ऊंची हो गई हैं, हमारे शहर कंक्रीट के जंगल में बदल चुके हैं, लेकिन पेड़ों से मिलने वाली ठंडी छांव छोटी पड़ गई है। आज इंसान के पास सब कुछ है, एसी है, कूलर है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, क्योंकि प्रकृति की ठंडक मशीनों से नहीं मिलती दोस्तों, वो सिर्फ पेड़ों से मिलती है।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: उस सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक पेड़ के कीमत की जो हमें सिर्फ गर्मियों में ही याद आती है। और सच कहूं तो गर्मियों का नाम आते ही सबसे पहले बचपन याद आता है। वो स्कूल से लौटते वक्त पेड़ की छांव में कुछ वक्त बिता लेना, वो दोस्तों के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ना और दादी का कहना धूप बहुत तेज है, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। वो शाम जब पूरा मोहल्ला पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाता था, कोई बातें करता था, कोई हंसता था और कोई बस हवा का आनंद लेता था। और रात में छत पर बिछी चारपाई, धीमी हवा और दूर कहीं पत्तों की सरसराहट और उन पेड़ों पर जगमगाते हुए जुगनू।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

छत पर बिछी चारपाई, धीमी हवा और दूर कहीं पत्तों की सरसराहट और उन पेड़ों पर जगमगाते हुए जुगनू। लेकिन आज जब हम शहरों को देखते हैं तो हर तरफ सिर्फ सीमेंट दिखाई देती है, पेड़ कटते गए और गर्मी बढ़ती गई। दोस्तों, कभी आपने किसी मजदूर को देखा है जो दोपहर की तेज धूप में काम करता है और फिर किसी छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर दो घूंट पानी पीता है? उस पल वो पेड़ उसके लिए किसी महल से कम नहीं होता। तभी समझ आता है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो जिंदगी को सहने की ताकत भी देते हैं।

दोस्तों, बहुत दुख होता है जब किसी पुराने पेड़ की जगह एक नई इमारत खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि पेड़ काटना सिर्फ लकड़ी काटना नहीं होता, उसके साथ जुड़ी यादें भी कट जाती हैं। किसी बच्चे का बचपन, किसी बुजुर्ग की शाम, किसी पक्षी का घर, सब खत्म हो जाता है। और शायद इसीलिए आज इंसान के पास सुविधाएं तो है, लेकिन प्रकृति वाला सुकून नहीं।

0: तो दोस्तों इस गर्मी जब भी तपती धूप आपको परेशान करे तो एक बार उन पेड़ों को जरूर याद कीजिए जो बिना कुछ मांगे सालों से हमें छांव देते आए हैं। और अगर हो सके तो इस बार सिर्फ गर्मी की शिकायत मत कीजिए, एक छोटा सा पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर बचपन वाली गर्मी लौटानी है तो पेड़ बचाने होंगे। तो चलिए रुक करते हैं समाचारों की ओर। समाचारों के बाद हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा, तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: नमस्कार, कार्यक्रम जारी रहेगा समाचारों के बाद। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के दो दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की तीन हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर

0: भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता UCC के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपुतली किशनगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेडेशन और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए और डीजल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब

0: 725 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए वहीं 1100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में चलाया जाएगा इस दौरान पानी चोरी और अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे ये समारोह दो चरण में होगा आज 2 पद्म विभूषण 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग स्वास्थ्य विभाग एनडीआरएफ एसडीआरएफ इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि से विशेषज्ञ भाग लेंगे इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके तत्काल उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा
0: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम अव्वल रही और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे प्रदेश में वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
2: तो श्रोताओं स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार मैं हूं हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ हाजिर है
3: मनीषा जोशी बोहरा और हम आपको प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं और सुनवाते हैं प्रोग्राम का फिर से गीत

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 1961 जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा सपना रखा जो उस समय लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने कहा कि इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका इंसान को चंद्रमा पर भेजेगा और उसे सुरक्षित वापस भी लाएगा।
2: दोस्तों 1995 में आज के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली थी।

0: दोस्तों अब चलते हैं 25 मई 1963 इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में 32 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के नेता एक साथ आए। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी यानी OAU के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस संस्था का उद्देश्य था अफ्रीकी देशों को उपनिवेशवाद से मुक्त कराना और महाद्वीप में शांति लाना।
1: उन्नीस सौ 1998 में आज ही के दिन परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य सहमत हुए थे।
0: पच्चीस मई का दिन खेल जगत में भी याद किया जाता है क्योंकि इसी दिन चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस का खिताब अपने नाम किया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और उत्साह का पल था।
1: दोस्तों 2010 के दिन भारतीय मूल की 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर निवर्तमान भारत प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित कर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थी।
0: दोस्तों 25 मई 2008 जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को रोबोटिक लैंडर फिनिक्स मास लैंडर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा गया। सोचिए दोस्तों एक समय इंसान चांद पर पहुंचने का सपना देख रहा था और अब मंगल की धरती पर अपने कदमों के निशान खोज रहा है। यह विज्ञान की उस उड़ान का प्रतीक था जो हमें हर दिन नई सीमाओं से आगे ले जाती है। तो दोस्तों 25 मई हमें सिखाता है कि सपने अगर बड़े हों तो इंसान चांद तक पहुंच सकता है, एकता हो तो पूरा महाद्वीप बदल सकता है, और अगर मेहनत और जुनून हो तो एक साधारण इंसान भी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है।

दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और आज ही के दिन हमारा भारत मनाता है गंगा दशहरा। दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसीलिए इस दिन को गंगा की धरती पर आगमन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। अगर इसकी पुराणों की कथा में की बात करें तो राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन गंगा के तेज प्रवाह को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और इसके बाद गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और लोगों का कल्याण किया। दोस्तों, इस दिन गंगा स्नान और पूजा, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता और इसके साथ ही गंगा आरती और भजन कीर्तन के साथ में जल संरक्षण और नदियों की स्वच्छता का संकल्प लिया जाता है। दोस्तों, हमें नदियों के महत्व और जल का संरक्षण भी देती है ये गंगा दशहरा का दिन। और गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक मानी जाती है।

0: दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध रखा है। खेल का नाम है फुटबॉल। हर साल 25 मई को दुनिया भर में विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य सिर्फ खेल को उत्सव मनाना नहीं बल्कि फुटबॉल के जरिए दुनिया में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना है। दोस्तों फुटबॉल आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। फीफा के अनुसार दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा देशों में खेल खेला जाता है और करीब 5 अरब लोग किसी न किसी रूप से फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, चाहे खिलाड़ी के रूप में हो, दर्शक के रूप में हो या प्रशंसक के रूप में। यही वजह है कि जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें एक ही मैदान पर टिकी होती हैं। फुटबॉल की सबसे खास बात यह है कि इसे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होती। किसी गांव की मिट्टी हो, शहर की गली हो या बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, फुटबॉल हर जगह लोगों को जोड़ देता है। ये खेल अमीर गरीब, भाषा, देश और संस्कृति की दीवारों को तोड़कर लोगों को एक साथ खड़ा कर देता है। इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए फीफा ने 21 मई से 25 मई तक विश्व फुटबॉल सप्ताह मनाने की शुरुआत की थी। इस साल की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। गियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों को करीब लाने वाली एक ताकत है, चाहे बच्चे मैदान में खेल रहे हों या लोग अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन कर रहे हों। फुटबॉल हर किसी को जोड़ने का काम करता है। अगर कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप है जिसे 5 अरब लोगों ने देखा था। ब्राज़ील अब तक सबसे ज़्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी फुटबॉल का क्रेज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर युवाओं के बीच। केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल का त्यौहार की तरह देखा जाता है। तो श्रोताओं, इस फुटबॉल दिवस पर आइए हम भी खेल की भावना को अपनाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ें और जीवन में टीम वर्क, अनुशासन और एकता का संदेश आगे बढ़ाएं। क्योंकि सच ही कहा है किसी ने कि जब पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दौड़ती है तब इंसानियत जीतती है।
1: जी दोस्तों, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के कुछ प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं जिनके नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगी। सुनील छेत्री, जिन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के महान कप्तानों में से एक अपना रुतबा कायम किया। बैचुंग भूटिया, जो भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, सिक्किम स्नाइपर भी उन्हें कहा जाता है। बी के बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, सुब्रता पॉल, गुरप्रीत सिंह संधू, इस तरह के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने विश्व पटल पर फुटबॉल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है।

पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसे क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों अब वक्त है विज्ञान विश्व को जानने का। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको किसी पेड़ की ऊंचाई नापनी हो लेकिन आपके पास उसके ऊपर तक पहुंचने का कोई तरीका ना हो, या फिर किसी नदी को पार किए बिना उसकी चौड़ाई पता करनी हो, या एक मकान बनाते समय ये जानना हो कि दीवार बिल्कुल सीधी है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आज से हजारों साल पहले भी इंसानों के सामने यही सवाल थे। न मशीनें थीं, न मोबाइल, न कंप्यूटर, लेकिन फिर भी लोग विशाल पिरामिड बना रहे थे, मंदिर बना रहे थे, खेतों की नाप कर रहे थे और आसमान में तारों की दूरी समझने की कोशिश कर रहे थे।

और इन्हीं ज़रूरतों के बीच जन्म हुआ गणित के एक ऐसे नियम का जिसने दुनिया को मापने का तरीका बदल दिया, पाइथागोरस प्रमेय। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता हैं तो तीसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये सिर्फ किताबों का सूत्र नहीं है दोस्तों, आपके घर की सीढ़ियों से लेकर मोबाइल के GPS तक, क्रिकेट स्टेडियम के डिजाइन से लेकर अंतरिक्ष तक, हर जगह ये नियम काम करता है। हम अक्सर इसे पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी कहानी उससे भी पुरानी है। बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता, मिस्र के पिरामिड और भारत के सुलभा सूत्रों में भी इस सिद्धांत के संकेत मिलते हैं। भारत में ये वेदियां बनाते समय सही समकोण बनाने के लिए रस्सियों का उपयोग किया जाता था। मिस्र में मजदूर 3, 4 और 5 लंबाई वाली रस्सी से बिल्कुल सही कोण बना लेते थे। जब इंजीनियर पुल बनाता है, जब आर्किटेक्ट इमारत की मजबूती तय करता है, जब आपका मोबाइल आपको सही रास्ता दिखाता है, तब कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय चुपचाप अपना काम कर रही होती है। और शायद यही वजह है कि लगभग 4000 साल पहले ये सिद्धांत आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस समय था। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, एक इंसान की सोच, खोज और समझ की भाषा है। एक छोटा सा सूत्र, लेकिन उसके अंदर छुपी है पूरी सभ्यता की बुद्धिमत्ता।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं और करते हैं काम की बात। दोस्तों गर्मियां अपने चरम पर हैं और ऐसे में हमारे शरीर को चाहिए ठंडक, तो हमारे जो डाइटिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं, वो भी हमें ये रिकमेंड करते हैं कि हमें चिया सीड्स लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं जो गर्मी से ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उन्हें भी हम चिया सीड्स दे सकते हैं। चिया सीड्स की खाली एक ही खासियत नहीं है कि ये इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन इसके साथ में इसे सुपर फूड भी कहा जाता है, और वो इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर चिया सीड्स के फायदे की बात करें तो उसमें है पाचन ये बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है, तो इसलिए ये हमारे शरीर में पाचन को सुचारू करते हैं। इसके बाद में ऊर्जा बढ़ाने में ये हमारी मददगार होते हैं। चिया सीड्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में सहायक माने जाते हैं, और इसीलिए कई खिलाड़ी भी जो हैं वो इसे अपने आहार में शामिल करते हैं। वजन को नियंत्रित करने में भी चिया सीड्स काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। पानी में भिगोने पर ये फूल जाते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है और बार बार भूख भी नहीं लगती। इसके अलावा दोस्तों चिया सीड्स हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों के लिए लाभकारी होते हैं। इसके साथ ही जो चिया सीड्स हैं वो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने गए हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और इसका एक और बहुत ही अच्छा एक लाभ है हमारे लिए, त्वचा और बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने और बालों को पोषण देने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही ब्लड शुगर को संतुलित करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। फाइबर की वजह से ये भोजन के बाद शुगर के तेजी से बढ़ने को धीमा करने में मदद करते हैं।

तो ये खाली एक ही इसका फ़ायदा नहीं है कि हम गर्मियों में इसे शरीर में ठंडक बढ़ाने के लिए काम में लें, इसके साथ ही ये खूब सारे फ़ायदे जो मैंने आपको बताए ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब इसे लेते कैसे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। 1 से 2 चम्मच आप चिया सीड्स को लेकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो सकते हैं, जिससे वे फूल कर बड़े हो जाते हैं। और फिर इसे दूध, दही, शरबत, ओट्स, सलाद, किसी में भी, जिसमें भी आप मिलाकर खाना चाहते हैं, आप खाइए। और गर्मियों में अपने शरीर को तरल रखिए और अपने शरीर को ठंडक इसे दिलाइए। तो ये थी हमारी काम की बात, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

श्रोताओं, अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कहानी नहीं, बल्कि उन वीर क्रांतिकारियों के साहस, त्याग और देशभक्ति का अमर उदाहरण है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 25 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान में हुआ था। रास बिहारी बोस बचपन से ही देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके मन में गहरा आक्रोश था और यही भावना उन्हें क्रांतिकारी रास्ते की ओर ले चली। साल 1908 के अलीपुर बम कांड में उनका नाम प्रमुखता से सामने आया। इसके बाद 1912 में उन्होंने उस ऐतिहासिक बम साजिश में हिस्सा लिया जिसका तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को निशाना बनाया गया था। साल 1913 में उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी बाघा जतिन से हुई। उनके मार्गदर्शन में रास बिहारी बोस का संकल्प और मजबूत हुआ और वो पूरी

0: तरह भारत की आज़ादी के आंदोलन में जुट गए। वो गदर पार्टी के प्रमुख नेता भी बने, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करना था। साल 1942 में उन्होंने जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने इस सेना का नेतृत्व भी किया ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मजबूती मिल सके। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके संघर्ष देशभक्ति को याद करते हैं। 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया था, लेकिन देश के लिए उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।
1: दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति में रक्षा विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। रक्षा विभाग देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है और भारी खतरों से देश की रक्षा करता है। और जब देश सुरक्षित रहता है, तब लोग शांति और निश्चिंतता के साथ शिक्षा, व्यापार, उद्योग और अन्य विकास कार्यों में भाग ले पाते हैं। रक्षा विभाग केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और महामारी के समय भी लोगों की सहायता करता है। और सेना के अनुशासन, तकनीकी विकास और अनुसंधान से ही देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति भी बढ़ती है। और इस प्रकार रक्षा विभाग देश की सुरक्षा, एकता और विकास को मजबूत बनाकर राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी संदर्भ में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि जो मिसाइल्स हमारे रक्षा विभाग में बनती हैं वो किस तरह की होती हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, ताकि आप भी अपडेट हो पाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिसाइल्स के प्रकारों की, कि प्रक्षेपण के आधार पर मिसाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, प्रक्षेपण के आधार पर मिसाइल्स होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। एक सतह से सतह पर वार करने वाली, एक सतह से हवा पर हवा में वार करने वाली, फिर हवा से हवा में वार करने वाली और हवा से सतह में वार करने वाली। इसके बाद जल से जल में वार करने वाली, जिसे हम टॉर्पिडो कहते हैं, और जल से सतह या फिर हवा में वार करने वाली। इसके बाद में अगर हम मिसाइल्स को रेंज के आधार पर, यानी कि परास के आधार पर अगर उसकी बात करें, तो परास के आधार पर जो हमारी मिसाइल्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले शॉर्ट रेंज, कम परास की, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है। उसके बाद में मीडियम रेंज, जो कि मध्यम परास की, वो 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की रेंज उसकी मानी जाती है। उसके बाद में इंटरमीडिएट रेंज की, यानी कि मध्यवर्ती परास की, 3500 से लेकर 5500 तक किलोमीटर तक इसकी रेंज रहती है। और उसके बाद में आती है अंतर महाद्वीपीय, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो कि 5000 किलोमीटर या उससे अधिक की क्षमता रेंज रखती है। गति के आधार पर अगर बात करें मिसाइल्स की, तो दोस्तों जो मिसाइल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। जो सबसोनिक होती है उसकी गति होती है 1 मैक। अगर हम मैक की बात करें तो 1 मैक यानी कि साउंड की स्पीड, और साउंड की स्पीड होती है 1 सेकेंड में 343 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड में वो 343 मीटर तक की दूरी तय करती है, वो होती है 1 मैक। और हमारी जो सबसोनिक मिसाइल होती है वो उसकी गति होती है 1 मैक से कम। जो सुपरसोनिक होती है उसकी गति होती है 1 से 5 मैक के बीच में, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसकी गति होती है लगभग 5 मैक या उससे अधिक। इसके बाद में हम अगर बात करें मिसाइल्स के पथ के आधार पर, तो 2 प्रकार की मिसाइल्स होती है। एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे क्रूज मिसाइल के बारे में। तो दोस्तों, जो क्रूज मिसाइल होती है इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता है, यानी कि ये अपने टारगेट को बनाने, निशाना बनाने के लिए वो किसी भी पथ का चयन कर सकती है। तो टारगेट होता है उसका, लेकिन वो पथ जो होता है उसका, कि वो किस तरफ से होके जाएगी, वो डिसाइडेड नहीं होता है, क्योंकि बीच में रास्ते में पेड़ आते हैं या कोई भी बिल्डिंग्स आती है, क्योंकि इनकी जो उड़ान की जो रेंज होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। तो वो कोई भी अपना रास्ता चुनकर अपने टारगेट को निशाना बनाती है, तो इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इन्हें उड़ान के दौरान हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं और उनका थोड़ा सा पथ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो मिसाइल्स होती हैं क्रूज मिसाइल्स, इनका थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये कम रेंज में, मतलब कम हाइट पर उड़ती हैं, तो जो भी रडार होते हैं वो इसको पकड़ नहीं पाते हैं और वो उनकी रेंज में आ नहीं पाता है। तो जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद में इनका वर्गीकरण जो होता है वो गति के आधार पर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसमें जो इंजन प्रयुक्त होता है वो जेट इंजन प्रयुक्त होता है। और अगर हमारे भारत के संदर्भ में बात करें, तो हमारे पास अभी ब्रह्मोस, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी क्रूज मिसाइल्स

तैनात है हमारे पास। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो पथ होता है वो पूर्व निर्धारित होता है कि यानी कि ये इसी हाइट पर उड़ेगी और इसी टारगेट तो उनका निर्धारित ही तो होता है, लेकिन इनकी जो जाने का तरीका होता है, पथ जो होता है, वो पूर्व एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट तय होता है कि वो उसी पथ से होकर जाएंगी। इसके बाद में इनका जो उड़ान होती है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि वो किस स्पीड से जाएगी वो पहले से पूर्व निर्धारित होता है। आप उसे एक बार अगर आप निशाना दाग देते हैं तो वो उसी स्पीड से जाकर अपने निशाने पर जाती है। उसके बाद में इनका पता लगाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इनकी जो हाइट होती है, उड़ने की जो इनकी हाइट होती है, वो रडार से ऊपर होती है। तो जो दूसरा देश है, जो भी दुश्मन देश है, तो वो रडार से इनका पता लगा लेता है। इसके बाद में अगर परास की बात करें तो परास के आधार पर इनका जो होती है क्लासिफिकेशन होता है कि इनकी क्या रेंज रहेगी, उस हिसाब से हम बैलिस्टिक मिसाइल्स का पता लगाते हैं कि ये उसका नाम भी उसी के हिसाब से होता है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये इस परास की है। उसके बाद में अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें एक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। और भारत के संदर्भ में हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है हमारे पास में जो है अभी अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, ये हमारे भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो चूंकि ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम है तो हम चाहते थे कि हमको आपको मिसाइल्स के बारे में विस्तार से बताएं। अगला जब भी प्रोग्राम होगा तो हम और भी इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगे।

0: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। मुझे मनीषा जोशीपुरा और मेरे साथ में
1: यानी मुझे हिमांशु अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह एफएम सन सिटी चैनल है और आपके लिए प्रोग्राम है जिंदगी जंक्शन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जिंदगी जंक्शन, जहां बातें होती हैं जिंदगी की, एहसासों की और उन सच्चाइयों की जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हिमांशु अवस्थी, और मेरे साथ हाजिर हैं
1: मनीषा जोशी बोहरा।
0: और हमारे साथ अनाउंसर ऑन ड्यूटी है हिना। और आज का हमारा विषय है जिंदगी में सही समय कभी नहीं आता। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ फैसले होते हैं जिन्हें हम बार बार सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी सही समय नहीं है। कोई कहता है थोड़ा सा पैसा आ जाए फिर शुरू करेंगे, कोई कहता है थोड़ा सा समय मिल जाए फिर मेहनत करेंगे, कोई कहता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच क्या है? सच क्या है दोस्तों? सच यह है दोस्तों कि जिंदगी में कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी समय की कमी होगी, कभी पैसों की, कभी लोगों का साथ नहीं होगा और कभी खुद पर भरोसा कम होगा। लेकिन जो लोग इन सब के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, कई बार हम जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी हमसे दूर हो जाती हैं। हम सोचते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन जिंदगी आसान होगी, एक दिन हमें सही मौका मिलेगा। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं। समय चलता रहता है, दिन बदलते रहते हैं और इंतजार करते करते कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: दोस्तों, इस वक्त आप सभी ने ट्यून इन किया है 102.1 FM सन सिटी और आप सुन रहे हैं जिंदगी जंक्शन। और हमारा आज का विषय है कि जिंदगी में सही समय कभी नहीं आता। दोस्तों, एक छात्र हमेशा सोचता है कि नौकरी लग जाए तब खुश रहूंगा। नौकरी वाला सोचता है कि प्रमोशन मिल जाए तब चैन मिलेगा। और जिसके पास सब कुछ है वो सोचता है कि काश थोड़ा सुकून मिल जाए। यानी इंसान हमेशा किसी अगले पल में जीना चाहता है, जबकि जिंदगी सिर्फ आज में होती है। तो दोस्तों, अगर किसान ये सोचकर खेत में बीज ना बोए कि अभी मौसम परफेक्ट नहीं है, तो शायद फसल कभी उगे ही ना। क्योंकि जिंदगी में परफेक्ट मौसम नहीं, हिम्मत जरूरी होती है।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: दोस्तों, ज्यादातर लोग देर करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और कल का वादा करते हैं, लेकिन कल ही वो दिन है जब लक्ष्य खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आज से ही शुरू करें, भले ही छोटा हो, भले ही गड़बड़ हो, बस शुरू करें, क्योंकि समय के साथ वो छोटे सुधार असली नतीजों में बदल ही जाते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, समय की कीमत को समझना है तो खुद को समय पर साबित करो। अमूल्य क्षणों का सही उपयोग ही सच्ची सफलता का संकेत है। हमारा जो भी समय है, हम अगर उसे समय

0: पर काम में लेते हैं, तभी समय हमें उन ऊंचाइयों तक तो पहुंचाता है जहां पर जहां के हम हकदार होते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें डर हम सबको लगता है। जो इंसान कहता है कि वो डरता नहीं, तो शायद वो सच नहीं बोल रहा। नई शुरुआत का डर, हार जाने का डर, लोगों की बातों का डर, असफल होने का डर, ये सब हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन फ़र्क

तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इंसान पूरी तरीके से तैयार कभी नहीं होता। तैयारी रास्तों में होती है, हिम्मत सफ़र में मिलती है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: दोस्तों, हारे और थके लोगों की बातें जरूर सुने, पर यदि वो ये कहें कि यह काम संभव नहीं है तो उनकी बातों को अमल में न लाएं। उनसे कहिए कि आप आराम कीजिए, मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा और यदि हारूंगा तो भी कुछ ना कुछ तो सीख ही लूंगा।
2: दोस्तों, हमने डर की बात तो कर ली, लेकिन आजकल की दुनिया में एक और चीज़ है जो हम इंसानों को बहुत रोकती है कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ अपने सपनों के पीछे भागेंगे तब भी लोग बोलेंगे, और अगर आप असफल हो गए तब भी, और अगर आप जीवन में सफल भी हो गए तब भी पीठ पीछे लोग आपके बारे में बातें करेंगे। तो फिर क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल कहता है। दोस्तों, दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने डर के बावजूद अपने सपनों को चुना है। एक छोटा शहर, सीमित साधन, कम पैसे या मुश्किल हालात, ये सब किसी इंसान को नहीं रोकते। रोकती है तो सिर्फ एक चीज़, खुद पर शक। और जैसे इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।

दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हुए हैं, हर किसी की नज़रों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढालने में लगे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि ज़िंदगी कितनी सरल है, और अगर हम सरल रहेंगे और अपने आसपास भी लोगों को सरलता से देखेंगे तो ये ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। और इसका एक सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने परिवार को समय पर वक्त दीजिए, उन्हें खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए।

कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी, इट्स माय चैनल।

दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि हम जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों को अक्सर टालते रहते हैं? किसी अपने से प्यार का इजहार करना हो, माँ बाप के साथ समय बिताना हो, या किसी दोस्त से माफी मांगनी हो, या अपने सपनों की शुरुआत करनी हो, हम सोचते रहते हैं कि अभी बहुत समय है। लेकिन जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। कई बार सही समय का इंतजार करते करते वो मौका ही हाथ से चला जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर दिल में कोई बात है तो कह दीजिए, अगर कोई सपना है तो शुरू कर दीजिए, अगर किसी से प्यार है तो जता दीजिए, क्योंकि कल सिर्फ उम्मीदें हैं, लेकिन आज हमारे पास है।

0: दोस्तों कई लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ नहीं है, पैसा कम है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा कदम, एक छोटी कोशिश और एक छोटा फैसला धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी बदल देता है।
1: दोस्तों, अगर आप रोज़ सिर्फ थोड़ा सा भी बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान भी एक कदम से ही ऊपर पहुंचता है, इसलिए खुद को कम मत समझिए। आपकी छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी हो सकती है।

0: दोस्तों, जिंदगी में असफलताएं भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि कई बार हार हमें वो सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा पाती। अगर जिंदगी में कभी आप टूटे हों, अगर कभी आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। और जो इंसान मुश्किल समय में खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे जिंदगी की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं है, बस परखती है।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल, हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वही मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है।

0: दोस्तों आज आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी सपने को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि वो भी सही समय नहीं आया है? दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी है, इंतजार करते करते इसे मत बिताइए। अगर गिरने का डर है तो याद रखिए चलना भी गिर कर ही सीखा जाता है। अगर लोग हंसेंगे तो हंसने दीजिए। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लीजिए कि मंजिल खास है। और अगर दिल कहता है कि कोशिश करनी चाहिए तो बस कर डालिए, क्योंकि जिंदगी में सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है। मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ मौजूद थी
1: मनीषा जोशी बोहरा और आप सुन रहे थे प्रोग्राम जिंदगी जंक्शन।
0: फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नया एहसास और जिंदगी की नई सीख के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, नमस्कार।

102.1 MHz पर आपने ट्यून किया है FM सन सिटी चैनल, और अब आपके लिए प्रोग्राम मंडे मेलोडीज़।

दोस्तों, मंडे मेलोडीज प्रोग्राम में आज कुछ ऐसे गीत जिनमें खूबसूरती है, सुकून है, खामोशी है, आहट है, एहसास है और प्यार ही प्यार है। खास तौर से ऐसे गीत जिनमें हमें सुकून की तलाश मिल जाती है, ऐसे ही गीतों पर हम कुछ बात करेंगे और प्रोग्राम है मंडे मेलोडीज।

कौन कहता है कि दिव्य शक्तियों से मिलने के लिए किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ही जाने की जरूरत है या मेडिटेशन के लिए किसी कोने में आंख बंद कर बैठने की और ध्यान लगाने की जरूरत है। जी नहीं, दिव्यता वे प्रेम से भरे ऐसे गीत भी हैं जिनमें सुकून को तलाशा जा सकता है। 3 मिनट के गीत को सुनकर 3 दिनों के योग प्रॉपर्टी को हासिल किया जा सकता है और खुद को हील भी किया जा सकता है।

दोस्तों, ये गीत राज फिल्म का है जिसके गीतों में सुकून ही सुकून था। राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत एक ऐसी फिल्म थी जो 1967 में बनी थी। उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं थे, हालांकि ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दोनों की आवाजों में गाया गया, मगर मोहम्मद रफी का वर्जन आज बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मधुर आवाज में गाया ये गीत सदाबहार गीतों की श्रेणी में तो शामिल होता ही है, बहुत ऊंची श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, मगर दिव्यता से भरपूर ये गीत आज लोग गुनगुनाते नजर आते हैं। गीत का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, गीत लिखे थे शमीम जयपुरी ने। गीत रिकॉर्ड हुआ तो ऐसी मिसाल की तरह बना। राजेश खन्ना की फिल्म के शुरुआती हिट गानों में एक था ये गीत, और मोहम्मद रफी के गीतों की डिक्शनरी में यादगार गानों में शुमार था, मगर आज भी अधिकतर लोगों को मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये गीत बहुत पसंद आता है।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: साथियों, ऐसे ही कुछ सुकून भरे गीत होते हैं जिनकी फितरत खामोश होती है, और गीतों को सुनकर खुद को हील कर आप बहुत खुशी महसूस कर सकते हैं। बल्कि यूं कहिए कि इन गीतों के जरिए खुद को हील भी किया जा सकता है और अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही खूबसूरत बदलाव किया जा सकता है। सोच में स्थिरता और बिहेवियर में और पूरी जिंदगी में पीस और मिठास भरी जा सकती है। ऐसा ही एक गीत मुलजिम फिल्म का था। बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। इसका संगीत रवि शंकर ने दिया था, गीत शकील बदायूं ने लिखे थे। 1963 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। अभिनेता प्रदीप कुमार और अभिनेत्री शकीला पर फिल्माया गया ये रोमांटिक गीत। बहुत ही खूबसूरत गीत बना, बल्कि यूं कहें कि रोमांटिक गीतों की फहरिस्त में टॉप का दर्जा इस गीत ने हासिल किया।

0: इस खूबसूरत गीत को सुनने के बाद लोगों को ये एहसास होता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिटी, इस एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। गीतों में शब्दों, शायरी, संगीत से भरी गई दिव्यता, डिवाइन लव और फेमिनिटी के साथ मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ही आसानी से बयां कर पाता है ये गीत। जो बात आप बातचीत के जरिए नहीं कह पाते, उसे गीत की एक लाइन में ही गुनगुना कर आसानी से बयां कर देते हैं। और मंडे मेलोडीज में कुछ आज ऐसे ही गीत हैं जो सुकून से भरे हुए हैं।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश

0: बच्चा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

तो दोस्तों, गीतों के जरिए मंडे मेलोडीज प्रोग्राम में हम तलाश कर रहे हैं सुकून की। 1976 में बनी एक फिल्म थी कितने दूर कितने पास। संगीत दिया था चंदन परदेसी ने और गीतकार थे डीएस सुल्तान। अपनी आवाज से संवारा था चंद्रानी मुखर्जी ने। ये भी ऐसा ही एक गीत था जिसमें फेमिनिटी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस रूप में देखा जा सकता है।

राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं अपनी जान भी दे दूं तो ऐतबार नहीं कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं। यूं ही सही मेरी चाहत का इम्तिहान तो लो, तुम एक बार मेरी मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। तुम्हारे प्यार तुम्हारी नज़र की हसरत है, तुम अपने हुस्न की अजमत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मेरी मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। साथियों, मैस्कुलिन एनर्जी को अगर जानना है और देखना है तो इस गीत को सुनकर एहसास किया जा सकता है और डिवाइन लव को महसूस कर रियल रोमानियत को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिल्म का नाम बाबर, संगीतकार रोशन, गीत लिखे थे साहिर लुधियाना।

आपने ट्यून किया है FM सन सिटी चैनल और प्रोग्राम का नाम है मंडे मेलोडीज़। दरअसल मैं आपसे गीतों के ज़रिए बस इतना सा ही कहना चाहती हूँ, जहाँ सुकून होता है वहाँ मेडिटेशन वाइब्रेशन अपने आप क्रिएट हो जाती हैं, और वहीं दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है। और जैसे ही किसी व्यक्ति में फेमिनिटी और मैस्कुलिन एनर्जी पावर का जो बैलेंस होता है वो 50-50% होता है, तो वहाँ कस्में, वादे, प्रेम और रोमांस की कशिश दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। डिवाइन लव को अगर 100%

0: रोमांस की कशिश दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। डिवाइन लव को अगर 100% आपको महसूस करना है तो आप ये गीत सुन सकते हैं।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

दोस्तों, ये गीत लोगों की जुबान पर और जहन में छाया रहा। ये गीत 1973 में आई सुपरहिट फिल्म झील के उस पार से लिया गया है। बेहद ही रोमांटिक और सदाबहार गीतों ने नौजवानों के दिलों में इसको धड़काया। गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीतकार आर डी बर्मन थे। किशोर कुमार का गाया ये गीत धर्मेंद्र और मुमताज पर फिल्माया गया था।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंडे मेलोडीज अपनी दोस्त हिना के साथ में।

साथियों, हम बात कर रहे हैं डिवाइन लव की, सुकून की, मेडिटेशन की, मगर सब गीतों के जरिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर डिवाइन लव 100% महसूस करना है तो कई ऐसे गीत हैं जिन्हें सुना जा सकता है। ऐसे ही एक फिल्म 1975 में बनी थी, नाम था कागज की नाव। गीत गाया था आशा भोसले और मनहर उदास ने। इतना खूबसूरत गीत, इसके गीतकार थे नक्श लायल पुरी और संगीत दिया था सपन जगमोहन ने। ये गीत अपने मधुर संगीत और भावपूर्ण बोलों के लिए बेहद लोकप्रिय हुआ। अभिनेता राज किरण और अभिनेत्री सारिका पर इसे फिल्माया गया। गीत का दृश्य भी अपने अंदाज के लिए याद किया जाता है, जिसमें अपनेपन, सादगी और हर जन्म में साथ निभाने के भाव देखे जा सकते हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दो दिलों का उजाला रहे, हाँ रहे, मैं तुम्हें देवता मान लूं, मन मेरा एक शिवाला रहे, नैनों का संगम होता रहे, सपनों का सावन गाता रहे, फूलों के मेले लगते रहें, गीतों के मौसम आते रहें, हाँ आते रहें, हाँ रहें। गीत में सुकून के साथ साथ पॉजिटिव दृष्टिकोण है, आशा की किरण और देवों को साक्षी मान, प्रेम के समुन्दर में गोते लगाने जैसे भाव भी इस गीत में है। गीत ने कई दिलों में मर्म भाव पैदा किए। कई गीत ऐसे ही हैं जो सुनने वालों को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं और मात्र 3 मिनट में ही उन्हें वो कर्तव्य सिखा देते हैं जो उनकी जिंदगी को ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देते हैं।

फिल्म थी सती सावित्री। जो गीत अभी आपने सुना, इसे इस फिल्म से ही लिया गया था। सुकून से भरे भाव इसके हर गीत में आपको नजर आएंगे। भावों द्वारा संवादों से भरा गीत, जिसमें मर्म संवेदनाएं, करुण रस और इबादत के जज्बात आपको देखने को मिले होंगे। आवाज दी थी लता मंगेशकर ने और साथ में मन्ना डे ने।

आपने ट्यून किया है FM सन सिटी चैनल। प्रोग्राम का नाम है मंडे मेलोडीज। दोस्तों, 70 के दशक में कुछ खास संगीतकारों के गीत लोकप्रिय थे, मगर कुछ अनजाने और कम सुने गए संगीतकारों के गीत भी लोकप्रिय हुए। उन्हीं में से कुछ बहुत से चुनिंदा गीत हैं, हालांकि वो कम हैं, मगर उनको सुनने के बाद दिल में कुछ अजीब सी हलचल होती है।

इस गीत को सुनने के बाद कई अजब से एहसास आपको होने लगते हैं। दिलों में छुपी कसर मगर खामोशियों में प्रेम का एहसास। हर गीत इस फिल्म का खास था। फिल्म थी दिल ने फिर याद किया। इस गीत को आवाज दी थी मुकेश मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुरे ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मंडे मेलोडीज में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गीतों में छुपी सुकून, भाव, फेमिनिटी, लावण्यता और मैस्कुलिन एनर्जी। सच बात यह है कि हमें गीतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम गीतों को सुनकर, उनके भाव, उनके रसों को सुनकर खुद को इस तरह से बैलेंस करते हैं तो हमारी भी एक फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और जब वो बैलेंस होती है तो हम लोगों को लुभावने लगते हैं और हमारी दोस्ती सभी से बहुत अच्छी तरह चलती है। फेमिनिटी और लावण्यता से भरे भाव, गीत के शब्द, संगीत और फिल्मांकन, मर्म भरा ये गीत जिसमें रूमानियत और मासूमियत भी थी। फिल्म का नाम था आनंद आश्रम। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कई बार कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जिनमें भाव छुपे होते हैं। सुकून होता है, चंचलता, नजाकत, जज्बात, रोमांस और दिल को धड़काने की ताकत होती है। ये सब गीतों के शब्दों का और म्यूजिक की कंपोजिशन का कमाल होता है।

दोस्तों आज आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंडे मेलोडीज। इसी तरह हमारा और आपका ये मिलन होता रहेगा, बातें होती रहेंगी, गीत सुनते रहेंगे, हाँ मिलन होता रहेगा। आज इतना ही, अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। आज आपके लिए प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही थी आपकी अपनी दोस्त हिना, और अब इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंडे मेलोडीज। ये FM सन सिटी चैनल है। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपए और डीजल 95.20 रूपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की

0: बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
2: आपके जीवन में

0: खोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, आए दिन बहार के फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।
3: मेरे दिल से

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा वाडवाल की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई बाल जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात

लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी जिंदगी भागती जरूर है लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शोर नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है, ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर। और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा, बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं, आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर, और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार है संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनकी पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से

0: उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं, ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे, और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं. कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं. हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत. लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है. ये गीत बहुत खूबसूरत है. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को, और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज हम आपके गीत भजवा सकें. और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से. मैं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज्यादा नजर आ रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है. आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है. बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है. इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए, और उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी. देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को.
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है. आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गणगौर.

0: सुई धागे सू कैरी है मन री हर एक पीर, रंगा री इन छब सू बदले कपड़ा री तकदीर। बूटी छपी है बागा री और ब्रश रो चालियो जादू, लिबास देकर मन भी हो गयो सबारो आज बेकाबू। बिल्कुल आपने अठेरा परिधान अठारो पहनावो देकर हर कोई है जो को बेकाबू हो जावे, और इपर होने वालो जो को काम है साथे साथे रंग बिरंगा रंगारो जो को मेल है कपड़ा ने और भी मनमोहनो बना देवे। तो चलो आज का कार्यक्रम ने और भी मनमोहनो बनावा और स्वागत करा सगली सखियां रो कार्यक्रम गणगौर रमाई ने। तो साथ ही साथ सगली सखिया ने आपरी सखी कोमल राठौड़ रा घने मानसू राम राम, और शीतल आपने भी मारा घने मानसू राम राम।
1: शीतल री तरफ सु भी सगली सखिया ने घने मान राम राम। और आज रो कार्यक्रम जैके देखो आप बात करी थी हो कपड़ा री और रंगा री, तो कपड़ा पर आपरे हुनर रो जादू के तरीके सु बिखेर सके है उन तरीके रही रंग लेर हाजिर हाँ आज रे इन कार्यक्रम में। तो इनरी तो बात आपा करा है लाई, साथ ही आज है गंगा दशहरा या गंगा दशमी भी जिन्हें कया करे है। तो सबा ने वीरी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनावा। और बिल्कुल गंगा अपनी माता है और जल अपनी धरोहर है। तो पावन गंगा दशमी रे इन मौके माते यानी आज सु 25 मई सु लेन विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून ताई गंगा जल संरक्षण अभियान भी है जो को चलायो जा रियो है। तो आपने जल है जो को बचावनो है, और साथ ही साथ है इन पर अरवरी सब आने एक बार फिर सु मोकली मोकली शुभकामना।

0: बिल्कुल, पधारो हमारे देश राजस्थान। पधारण वाला जितना भी मेहमान होया करे है, वह जब भी राजस्थान री छवि बनाया करे है तो हमारे सामने एक ही छवि आया करे है, अठेरा रंग बिरंगा परिधान।
1: बिल्कुल।
0: और कपड़ा री अगर बात करा तो आपने राजस्थान रे कपड़ा री एक खासियत आ भी है कि अठेरा रंग और वहाँ रंगा सुसजोड़ी तरह तरह री कलावा।
1: बिल्कुल, कला वहाँ है जो कि हाथ सु करी जावे और हाथ री कला सु यानी हाथ री उंगले सु जद एक एक एक एक टांका और एक एक कलाकार रा रंग बिखरे तो साधारण सु जो को कपड़ो है वो भी किया करे नहीं कि राजशाही बन जावे शीतल जी, और असली रंगत आवे जत पारंपरिक कला रे साथे रंग भी मिल जावे और जत बुटीक री बारीक कढ़ाई फैब्रिक पेंटिंग रा रंग और एक दूजा सु मिल जावे तो ये जका परिधान है वे सिर्फ परिधान ही कौन रहे वो बन जावे मारवाड़ रो जीवंत गहनों।
0: बिल्कुल, और कपड़ा रो इतिहास उत्तो ही पुराणो है जितनी अजिती आपानी अठेरी संस्कृति। कपड़ो सिर्फ तन ढकन रो ही काम कोनी करया करे बल्कि कला रो भी एक माध्यम है। वीरो एक कैनवास कह सका हाँ, जिरे माथे छोटी छोटी पत्तियां फूल कैरी री डिजाइन और साथ ही साथ रंग एक कपड़ा पर जब बिखरे तो इं लागे ज्या मरुधरा रा धोरा माथे बसंत उतर आयो है।
1: बिल्कुल, और कटई हाथ सु रंग बिरंगी आकृतियां कपड़ा माथे उकेरे तो कटई थप्परी थप थपरी जकी थाप है बा प्राकृतिक रंगारे साथ है आपनी जकी विरासत है बिने आवन वाली पीढ़ी रा दिलारे माथे एक किया करे की छाप देवे। और कटई ब्रश री छाप सु तो कटई घुंगरू सु और जरी रा तारा री खनक और कटई गोटा पत्ती री चमक कटई सोना चांदी रे तारा सु शाही अंदाज देर जरी री चमक रे साथ ही एक परिधान ने मारवाड़ रो या हिंदुस्तान रो एक अनमोल गहनो बना दिया करे। तो कपड़ा पर बिखरता रंग है ये जो कि बूटियां है सिर्फ फैशन नहीं है बा अपने देश री कला री गौरवशाली जो को इतिहास है वो मान्यो जावे।

0: कपड़ा माथे हुनर रंग रेडियो रे संग लेन आया हा आज रे इन विशेष गणगौर में। तो ई दिन ई विशेष गणगौर में ही अब मासू इंदौर सु फोन रे माध्यम सु जुड़िया है। आप रे हाथ रे हुनर रंग री कलाकारी सु कपड़ा ने नयो रूप देवन वाली फैब्रिक पेंटिंग कलाकार अनुराग जैन जो आप री कला सु तो ऊंचो नाम कमायो ही है, साथ ही साथ कई महिलावा ने ओ हुनर सीखा वाने आत्मनिर्भर बना रोजगार दिराने रो भी काम करियो है। तो आसु बात करेला कोमल राठौर।
1: कला सिर्फ कागज या कैनवास तक ही सीमित कोनी होवे, ज्यादा कपड़ा पर उतरे तो पहनावा ने जीवंत बना देवे। और फैब्रिक पेंटिंग यानी कपड़ा पर चित्रकारी एक एड़ी फूटरी विद्या है जो कि सादा कपड़ा ने भी एक न्यारी ओर खान देवे। और आज आपने साथ एक एड़ी जानी मानी सखी जुड़ी है जका रंग और ब्रश रा जादू सु फैब्रिक पेंटिंग री दुनिया में आप एक मोटो नाम कमायो है। तो आज अपने साथ है फैब्रिक पेंटिंग कलाकार अनुराग जी जैन। तो अनुराग जी, जोधपुर आई गणगौर कार्यक्रम में आप घणी मानसु स्वागत और राम राम।
2: राम राम जी गणगौर की पूरी टीम को और आकाशवाणी टीम को, मेरा राम राम और श्रेताओं को राम राम।
1: बिल्कुल अनुराग जी, सबसे पहले आपसु ओ जाननी चाहवा कि रंगा और कपड़ा री खूबसूरत दुनिया रे मायने आप रो आनो किया हुयो और इन क्षेत्र सु जुड़न रो जको विचार है वो आपरे मन में किया आयो।
2: देखिए, रंग किसको अच्छे नहीं लगते हैं, और उन्हीं रंगों ने मुझे अट्रैक्ट किया और मेरे मन में आया कि जो मेरे अंदर से जो मेरे फूलों के लिए, पत्तियों के लिए जो विचार निकलते हैं उनको मैंने कपड़ों पर उतार दिया। और उससे मैं जुड़कर ये कहना चाहूंगी कि मन बहुत प्रसन्न रहता है और बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, मतलब आप जो को प्रकृति से जुड़ाव है, आपने इच्छा रे हिसाब से आप इन क्षेत्र में आया हो।
2: अब बिल्कुल जी बिल्कुल, उनको सबको देख देख के बस मन में हुआ कि इनको कपड़ों पर

0: जाए, सभी को पहनाया जाए और खुद भी पहना जाए। जी
1: बिल्कुल। और एक कोरा कपड़ा पर जब आप ब्रश चलाओ तो कपड़ा रो जो रंग रंग है या कपड़ा रो रंगा रो जो तालमेल है बिनु बिठानो की तो मुश्किल हुआ करे।
0: देखिए, मुश्किल तो अब नहीं लगता है, पहले लगता था। जब मेरा शुरुआत का समय था तब ऐसा लगता था ये सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मन में कुछ शंका रहती थी। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते ऐसा लगा कि नहीं, कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई डिजाइन किसी के लिए बनी है, तो बिल्कुल हमको उसको कपड़े पर उतारना है और सबके सामने लेकर आना है। जी
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया है, क्योंकि किया करे ना कि आपा अगर सोचला कि आ चीज आपा ने करनी है तो
0: जी
1: आपा भी ने बहुत बढ़िया बना दा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। देखिए,
1: बिल्कुल
0: जब हम अंदर से सोच लेते हैं ना कि ये मैंने सबसे

0: मन में कुछ शंका रहती थी, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते ऐसा लगा कि नहीं, कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई डिजाइन किसी के लिए बनी है, तो बिल्कुल हमको उसको कपड़े पर उतारना है और सबके सामने लेकर आना है। जी
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, क्योंकि किया करे ना कि आपा अगर सोचला कि आ चीज आपा ने करनी है तो
0: जी
1: आपा भी ने बहुत बढ़िया बना दा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। देखिए, जब
1: बिल्कुल
0: हम अंदर से सोच लेते हैं ना कि ये मैंने सबसे अच्छा बनाया है, तो सबको देखने में भी वो चीज बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है और सब खुश हो जाते हैं।
1: चित्रकारी रे मायने जो को कपड़ा रो चुनाव हुआ करे वो भी खासो मायनो राख्या करे, तो किसा कपड़ा माथे रंग है जका सबसे ज्यादा खिलर आवे और ये रुकाई कारण है।
0: देखिए, सबसे मेन चीज तो यह है, फैशन की दुनिया है ना जी। तो जैसे आज के समय में ऑर्गेंजा कपड़ा बहुत ज्यादा इन है,
1: बिल्कुल
0: और तो मैं उसकी बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि उसके ऊपर जैसे ही अपन कलर्स को डालते हैं ना, तो वो इतने अच्छी तरह से उभर कर आते हैं कि मतलब आप देखते रह जाएंगे, और उसमें हम एक वॉटरी इफेक्ट, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो दे पाते हैं। और दूसरे धीरे धीरे फिर जॉर्जेट है और चंदेरी है, इन सारे कपड़ों पर भी हम काम करते हैं, उनका एक अलग ही निखार होता है।
1: बिल्कुल, और जी की आप बात पेंटिंग भी कर रही है, हाँ, तो पेंटिंग
0: जी
1: करता टाइम देखो कपड़ा पर रंगा ने पक्का करण वास्ते या फिर फैलावन से बचाने वास्ते कौन सी बात का ध्यान आपने रखने जरूरी हुआ है।
0: देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने पेंटिंग कर ली है, तो उसको हमेशा 24 घंटे के बाद उल्टी तरफ से प्रेस जरूर करना चाहिए, ताकि वो कपड़े और कलर की पकड़ मजबूत हो जाए। और फिर आगे जब भी आप उनको जब धोने के लिए जाएं, वॉश करेंगे, तो अपन को उनको बहुत घंटों के लिए डिप नहीं करना है, जैसे कि अपन गला देवे हैं, तो वैसा नहीं करना है अपने को। तो उससे भी अपन कपड़ों को, रंगों को बहुत अच्छी तरह से आगे अच्छा से रख सकते हैं।
1: जिया की कई फैब्रिक कलर है जो कि शीशे हो या करे बे जल्दी सूख जावे या कई ट्यूब्स है जो भी जल्दी सूख जाया करे, तो आने लंबा टाइम तानी ताजा रखने वास्ते कोई टिप।
0: हाँ जी बिल्कुल, है ना, अपन उन कलर्स की बॉटल्स में थोड़ा सा पानी या मीडियम, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा डालकर, समय समय पर बॉटल्स को खोलकर और हमेशा बॉटल में शेक करके यूज करना चाहिए। और जब भी आपको उनको रखना हो कि भाई अब मुझे एक महीने काम नहीं करना है, तो उनमें थोड़ा सा पानी डालकर और बॉटल को टाइट बंद करके उल्टा रखना चाहिए, ताकि लंबे समय तक वे कलर गीले बने रहे और अपन आगे यूज कर सका।
1: बिल्कुल, आ तकनीक अपना रापा जगह वेस्ट हो रहा जगह कलर है वेस्ट हो जावे तो भी सुपा बच सका।
0: जी
1: बिल्कुल, आप ये जितनी भी पेंटिंग है वहां की
0: जी
1: जो डिजाइन है वे भी काफी अनोखी हुई है करे, तो ये
0: थैंक यू
1: डिजाइन आप
0: जी।
1: जब बनाओ तो आ रही जो की प्रेरणा है वह आपने कठा सु मिले कटे कटे का अपनी जो क्या प्रकृति है अपनी लोक संस्कृति है वह भी हीरो हिस्सो हैगी।
0: बिल्कुल जी, प्रकृति तो हमारी सबसे बड़ी शिक्षा हमको देने वाली है। जैसे हम कोई भी पेड़ देखते हैं, तो हम उसको अपने कपड़ों पर उकेर देते हैं। आप किसी भी तरह के वर्क को देख लीजिए, जैसे चंदेरी पैटर्न हुआ, माहेश्वरी हुआ, पैठणी हुआ, इन सब में भी हमको ये चित्रकारी देखने मिलती है, वो वीविंग के थ्रू मिलती है, और मैं अपने ब्रश के थ्रू इन सबको उतारती हूँ। तो देखिए, प्रकृति से हमारा कहीं ना कहीं तो जुड़ाव है और बना हुआ है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जुड़ी डिजाइन ना आप ज्यादातर बनाया करो।
0: जी मैं फूलों से बहुत इंस्पायर हूँ, और फूल मुझे बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जी
1: और अनुराग जी, तो अमूमन आप भी सोचा कि जबकि कपड़ा पर पेंटिंग हुए वो धोवन सु खराब हो जी, तो इरी जबकि लंबी उम्र है या देखभाल वास्ते काई करना चाहिए।
0: हाँ देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटिंग करने के बाद उसको उल्टी तरफ से प्रेस करना है। रख रखाव में आप उसको सादा, मतलब यदि आपकी सिल्क वगैरह पर पेंटिंग है तो वो तो ड्राई क्लीन ही होगा, और यदि आप जॉर्जेट और दूसरे कपड़ों पर कर रहे हैं, तो उसको आप होम वॉश भी कर सकते हैं। इजी वॉश कीजिए, ज्यादा देर तक डिप करके मत रखिए, और बिल्कुल उसकी ज्यादा बहुत कड़क अपन को देखभाल की आवश्यकता नहीं है, इजी है इन सबको रखना।
1: तो ये जो पेंटिंग है मतलब लंबा उम्र तक चल सके कितना टाइम तक चले लगभग।
0: जी बिल्कुल, मैं इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरे पास आपको 30 साल पुरानी भी साड़ियाँ, जो मैंने अपनी सासू जी को बनाकर दी थी, वो साड़ियाँ भी आज अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्रेश हालत में हैं।
1: तो मतलब अपनी क्वालिटी जो कि आप यूज ले रहे हैं रंगारी भी पर डिपेंड करे
0: बिल्कुल,
1: और कुछ
0: रंग
1: रख
0: हाँ,
1: रखाव।
0: कलर्स बिल्कुल आप अच्छी क्वालिटी के यदि यूज कर रहे हैं और उनका रख रखाव अच्छे से रख रहे हैं, तो वे लंबे समय तक आपका साथ देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, फिर आप अच्छे से रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और आप
0: जी
1: एक बेहतरीन कलाकार तो हो ही, पर एक कलाकार हुनो और दूसरा ने कला सिखानो इनमें कितो फर्क किया करे, क्योंकि आप रोज को टीचिंग एक्सपीरियंस है वो केड़ो करियो, क्योंकि आप आज की कला है बस सिखाया भी करो।
0: जी देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने आप को एक बहुत छोटी सी कलाकार मानती हूँ, लेकिन हाँ प्रकृति ने जो मुझे दिया है

0: तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब में बांटना चाहिए। मेरे लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि किसी भी, मैंने जैसे 100 लोगों को सिखाया है, और उनमें से यदि कोई 2 लोग भी ऐसे निकल गए जिन्होंने आगे चल के अपना जीवन यापन कर लिया या उससे कुछ तो अपने लिए कर लिया, तो मुझे सिखाने में बहुत बहुत आनंद आता है, और इसीलिए मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ।
1: बिल्कुल। और जब
0: जी
1: नहीं हो कोई स्टूडेंट आवे या कोई महिला आवे, वो
0: जी
1: पहली बार आपरा हाथ में ब्रश पकड़े, तो
0: जी
1: वीरा मन में एक डर भी हुआ करे कि कपड़ो है जो को खराब नहीं हो जावे, तो वीरा ये डर ने आपके यहाँ दूर कराया करो।
0: मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सबसे पहले उन लोगों को बहुत छोटी छोटी सी चीजों से शुरुआत करवाती हूँ, और उनको रफ कपड़ा एक देती हूँ कि भाई आप सबसे पहले ना इस पर चलाकर देखिए ब्रश को, और उनको मैं टेक्निक सिखाती हूँ कि देखिए आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका चीज भी नहीं बिगड़ेगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे पहली चीज उनको हम सफेद रंग पे काम कराते हैं, क्योंकि सफेद रंग पर कोई भी कलर आप डालिए सदा उठ कर आते हैं, तो जो स्टूडेंट आया है वो अपना मन एकदम खुश पाता है कि अरे वाह मैंने इतनी सुंदर चीज बना ली। तो मैं इस चीज का जरूर ध्यान रखती हूँ कि उनको मोटिवेट भी कर सकूं और उनको अच्छी तरह से सिखा भी सकूं। हमारा यही उद्देश्य है और यही मेरी कामना बनी रहती है कि जो भी आए तो वो इस चीज से जुड़ता जाए और अपने लिए कुछ करता जाए। जी
1: बिल्कुल, कला ने आप आगे तो बढ़ा रही हो, लेकिन देखो आज को डिजिटल युग बोल दो चाहे बदल तो दौर के दो,
0: जी
1: तो जो कि अब आर लोग है फोन री स्क्रीन में घणो भगत बिता रहा है, तो वन ने कपड़ा और रंगारी पारंपरिक दुनिया से जोड़न वास्ते आप काय प्रयास कर रहे हो, या फिर वाने जोड़नो कितो दोरो काम है अब आर के टाइम
0: अरे ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से।
1: में।
0: मैं मेरी जो सफलता है जो पिछले कुछ सालों में मुझे मिलती जा रही है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो उसका मैं श्रेय सोशल मीडिया को ही देना चाहूंगी। तो देखिए इससे मेरे, मैंने और मेरी टीम ने और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से इसी से फायदा उठाया है। सोशल मीडिया के तो दोनों ही फायदे भी है नुकसान भी है।
1: हाँ वो
0: तो
1: तो
0: मैं तो लोगों से चाहूंगी कि जैसे ही यदि इस तरह की कुछ क्रिएटिव चीज आपको देखने को मिलती है तो सोशल मीडिया ही मुझे आगे बढ़ा रही है, उन लोगों से कांटेक्ट करा रही है और वो लोग मेरे से सीख रहे हैं।
1: कला ने एक थेरेपी भी मानी जावे, तो कहीं आपने भी कदी महसूस हुई हो कि आज की फैब्रिक पेंटिंग या सीखने के बाद में महिला वालों जो को मानसिक तनाव हुई करे या स्वभाव हुई करे, मेरे मायने कोई बदलाव आई हो?
0: जी ये बहुत बहुत सही कहा आपने। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिनका मन नहीं लगता था, जिनको ऐसा लगता था सब बेकार है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग की दुनिया में कदम रखा और मेरे से जब वो लोग जुड़े और उन्होंने काम शुरू किया, तो जो लोग 5 मिनट बैठ नहीं पाते थे, कुछ एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, वो लोग 3 3 घंटे पेंटिंग कर रहे हैं और कहते हैं हमें समय का पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आया है और उनका प्रेम मिलना जुलना ये सारी चीजें भी बढ़ी हैं। तो मुझे तो ये एक थेरेपी ही लगती है कि जिसका ये रंगों का असर है। जी
1: बिल्कुल, अगर मानसिक तनाव में कोई है या कोई समस्या भी ने है मेंटली, तो कोई थेरेपी रिजिया काम करे, तो आपा कोई भी कला रे मायने बिजी हो जाओ तो आपा है जो कहां सु बच सका, मानसिक तनाव से दूर हो सका।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो कहती हूँ कि ये थेरेपी डॉक्टर्स और ये लोग भी बहुत कम अपना रहे हैं, मतलब अपना तो रहे हैं लेकिन यदि इस चीज को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जाए तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल सर। और
0: जी
1: एक एक कला टीचर होने के नाते आप नया सीखने वाला ने कौन सी अड़ी गलतियां बतानी चाहो जो कि फैब्रिक पेंटिंग करते टाइम हो जाया करे?
0: देखिए इसमें ना कुछ फिक्स टेक्निक्स होती हैं, यदि आप टेक्निक्स को मान पालन करते हुए और अपने काम को करते हो तो आपको कभी कोई चीज गलत नहीं मिलेगी। और सबसे मेन चीज है रंगों का चुनाव, आप कैसा कर रहे हैं और
1: बिल्कुल।
0: किसके लिए कर रहे हैं, सामने वाले की क्या चॉइस है, यदि उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और आपको फिर कोई भी मतलब गलती नहीं नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि हाँ जिसके लिए अपन ने बनाया है यदि वो खुश है तो ऐसा लगेगा वाओ ये तो अपन ने क्या चीज बना कर दे दी। जी
1: बिल्कुल अनुराग जी, कला से जुड़ी बहुत सी चोखी जानकारी आज आप दी हो, तो चाहता चाहता
0: जी
1: सगली बहना ने श्रोता मैंने जिन क्षेत्र में आनी चाहे फैब्रिक पेंटिंग की दुनिया में कदम रखनी चाहे वाने काय सलाह देनी चाहो आप?
0: मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि धीरे धीरे करके जो भी सखियों को इसमें इंटरेस्ट है तो वो अपनी इस लाइन में जरूर आगे आए और कला के क्षेत्र में कदम रखें। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आपकी हो सकता है 2 4 दिन की प्रैक्टिस से आप इस लाइन में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने लिए अपने परिवार के लिए। हमको किसी को गिफ्ट देना है तो हम अपने हाथ की बनी हुई चीज भी दे सकते हैं, तो इस क्षेत्र में बहुत बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है और मैं तो चाहूंगी कि सभी लोग जरूर जरूर इससे जुड़े हैं।
1: बिल्कुल अनुराग जी, आप आपकी बात सुनर और लागे कि हुनर कोई रे पहचान।

0: मोहताज को नहीं हुए, और आज आप साबित कर दियो कि एक महिला अपनी रचनात्मकता से ही खुदरे साथ साथ समाज ने भी रंगीन बना सके।
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं।
0: बिल्कुल, आज आपको
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत आभार अनुराग जी कि आज आप टेम निकाला श्रोतावा ने और विशेषकर सखिया ने आत्मनिर्भर बनने री राह दिखाई। इनके वास्ते पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद, सुनने वाले श्रोताओं को मेरा धन्यवाद, और इस फैब्रिक पेंटिंग की कला से सभी लोग जुड़े यही मेरी आशा है। थैंक यू।
2: तो आभार आप सुनी फैब्रिक पेंटिंग कलाकार अनुराग जैन सु कोमल राठौड़ री फोन माथे बातचीत, और अब आपने सुनावा एक प्यारो सुगीत।

0: मर्द, चाहे जूती हो, चाहे पर्स हो, चाहे अपना सूट हो, सलवार सूट हो, साड़ी हो, सब पर कई तरह का काम आजकल करिया जावे, जियाँ कि दबका वर्क है, डंका वर्क है, मुकेश वर्क है, सलमा रो, जरी रो, कई तरह रो काम में देखो चलन में चाल तो रिया करे, और आने मिक्स कलर भी काम एक पोशाक माते उकेरियो जावे। तो जी रामायण, अगर आप दबका री बात करा तो भारतरी बहुत ही मन भावनी बारीकी और शाही कला है शीतल जी, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान और लखनऊ री प्रसिद्ध है। इनमें तांबा या पीतल रा बहुत घुमावदार तार हुआ करे, जकर उपयोग कर नक्काशी करी जावे। पुराना टाइम में जकर राजा महाराजा होता वे आपरी रानिया री जकी पोशाक है, शेरवानी है, या आपरी बाहू लेर असली सोना चांदी रा जका तार होता, वह सु दबका रो काम करियो जातो। तो जो को दबका रो काम है आजकल सोना तार तो कम देखने न मिले सोना चांदी रो, तो लेकिन आर्टिफिशियल कह दो या तांबा को बोल दो, बस वो जो को तार है वो तैयार करियो जावे, और फूल पत्ती बेल मोर पारंपरिक चीज़ ये डिजाइनर जकी है वारमाई ने सुई और धागा री सहायता सुकारीगर है अटे का बे बनावे। तो आजकल रा फैशन दौर में देखो मोजड़ी भी बने, पर्स भी बने, क्लच बैग भी बने, कोटी शेरवानी, सब जगह छोटी छोटी जड़ी भी चीज़ें हैं बा में वो जो को काम है वो देखने मिले।
1: बिल्कुल। और जहाँ की आप बात करी हो दबकारी, यूं ही गोटा पत्ती रो काम भी बहुत पुरानो काम है, और राजस्थान री पारंपरिक कढ़ाई री तकनीक है, जिनमें सोने चांदी या कॉपर री गोटा रा छोटा छोटा टुकड़ा ने अलग अलग आकार में, जहाँ फूल पत्ती री डिजाइन में काट र कपड़े पर सिलियो जावे है, और ई गोटे ने लेस या रिबन रा रूप में बॉर्डर या किनारी पर जब साड़ी या दुपट्टे या लहंगे पर लगायो जावे तो इन्हें गोटा किनारी भी कया करे है। और ई गोटे री ही पतली पतली महीन जकी लच्छिया सी दिखा करे वाने आपा सीखे रे रूप में जाना। हाँ जी, सो भी सुंदर सुंदर डिजाइन बना कई तरह की पोशाक है जकी तैयार करी जावे है। पतली डोरी नुमा आने कह सका आपा सीखियो गोटो जको आवे है वो भी कई तरीके रो आया करे है। पहली खरो हो तो हो सोने चांदी रो तांबे रे तार रो, आजकल है जको आर्टिफिशियल भी मिल जाया करे है, और तांबे रो सीखियो भी बहुत काम में आया करे है, क्योंकि आजकल सस्ती पोशाक भी कई लोगों ने चाहे जावे भी साबु आजकल तरह तरह करो सीखियो आन लागियो है, और इनमें कई तरह रा आपने कलर भी मिल जावेला, जिया गोल्डन है, सिल्वर है, रोज गोल्ड है, कॉपर है, पीच है, कई रंग रा आपने सीखिया गोटा मिल जाया करे है। और इन्हें आप हाथ सू भी लगा सको हो, और मशीना सू भी आप डिजाइन पर ट्रेस कर ड्रेस जो है बना सको हो, और साथ ही साथ गोटे रो एक प्रकार है होया करे है लफर लफी, लफा जो को चौड़ो और भारी गोटे रो बॉर्डर होया करे है, जो लहंगे ओढ़ने या बॉर्डर पर लगायो जावे है, जिको थोड़ो चौड़ो होया करे है, आमतौर पर इरी चौड़ाई 4 से 7 इंच होया करे है, और बठे लफी है जकी वह थोड़ी पतली होया करे है, और इन्हें ज्यादातर आपा जो है लफे रही अगल बगल में या कुर्ती कांचली री बावा में ओढ़नी रे किनारा पर आउटलाइन देने रे वास्ते लगाया जाया करे। और सीकर रो जको खंडेला गाँव है वो गोटा पत्ती और लफे रे काम रे वास्ते घणो ही नामी है।
0: बिल्कुल नामी है। और आप गोटा पत्ती की बात ही करी हो तो देखो गोटा सीखियर जी दिखन वालों पिटन वर्क एक हुआ करे, हालांकि बा सीखियो कौन बनो डो रहे, लेकिन बा पीटा कढ़ाई जकी हुए बा कपड़ा पर जद पहली तो वीर माई ने जको तार है वो ओके रहे, बिग बाद में बिन पीट पीट आकार देवे तो बिन पिट्टा कढ़ाई किया करे, तो आप बहुत ही खास हुए, आकर्षक भी हुए और पारंपरिक भारतीय कला इन्हें माने। और आज की कला है बा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और सहारनपुर से शुरू हुई है, और वर्तमान टाइम ने देखता राजस्थान रे मायने जयपुर जो को है ई डिजाइन रो सबसे बड़ो केंद्र बनेडो है, और वो जो को काम है वो ज़्यादातर प्रीमियम लुक देवन वालों फैब्रिक माते करियो जावे, और जियाँ कि दुल्हन रा लहंगा है, ब्यावरी साड़ियाँ हैं, हेवी अनारकली है, शेरवानी है, और जो कि डिजाइन है इन पीट रा डिजाइन बनाई जावे इन वास्ते इरी जो कि कढ़ाई है बच्चुभ कोनी, और बहुत ही क्लासी और रॉयल टच डिजाइन आ देवे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: तो शीतल जी अबार आप सब ने बता रहा अपने जका कपड़ा हुए बापर किन किन तरह रो जो वर्क है काम है वो हुआ करे तो इन्हीं आगे बढ़ाओ तो आप सगला ने बतावा कि अबार जो ट्रेंड में चल रहे है वो है डंका वर्क। और डंका वर्क रो जो काम है वो राजस्थान रा मेवाड़ यानी उदयपुर रिया एक बहुत ही दुर्लभ शाही और लगभग 400 साल पुरानी धातु री कढ़ाई कला है जिरे मायने पुराना टाइम में तो कहें तो सोना या चांदी री जकी धातु होती भी छोटी छोटी चौकोर पत्तियां बना था या प्लेट बना था जिन्हें डंको कहवे अभी ने कपड़ा माते टांको लगा डिजाइन देर जड़ियो जाओ तो। लेकिन अब कहीं है जिकी ये प्लेटा हुए पत्तियां हुए आर्टिफिशियल भी चाल गई ये ज्यादातर चांदी रा डंका बना और बीरे ऊपर सोना रो पानी चढ़ा इन्हें तैयार करे और तांबा रो भी आपने देखने मिले वो काम थोड़ो महंगो है और वजन भी भारी हुआ इनके वास्ते उपयोग पोशाक मायने दुल्हन रो जो को लहंगो है बिरे मात करियो जावे और ज्यादातर सूरज है चांद है मोर केरी री डिजाइन बनाई जावे। और आजकल आप देखा यहाँ की चांद री पोशाक है जो की काफी ट्रेंड में चल रही है
4: बिल्कुल और कमल री डिजाइन भी देखने मिल जाए
3: बिल्कुल डंका माथे सब ज्यादा देखने मिले तो जो की शुद्ध धातु है और ज्यादा तेज मेहनत मान लो जाए इन वजह से वो काम महंगो

0: भी है और गिने चुने कलाकार भी है जो कि आपकी पारंपरिक हुनर जिंदो रखने वास्ते आज रो जो को आधुनिक टाइम में कलाकार लुप्त होती कला ने दोबारा नयो फैशन है नयो वेस्टर्न ड्रेस है या डिजाइनर है साड़ियाँ हैं वह सब रे मायने थोड़ी थोड़ी कलाकारी है जबकि उकेर रिया है और डिजाइन री जबकि 3D चमक हुआ है वह कोई भी नकली सितारा या नगमे है जबकि कोनी देखने ने मिले
1: बिल्कुल और एनी तरीके ही सलमा तारी रो काम है जको वो भी आपने ठहरी एक पारंपरिक भारतीय कढ़ाई री कला है ई काम में भी सोने चांदी रे चमकीले और स्प्रिंग जड़ा मेटल रा जका तार होता है वारो उपयोग कर कपड़े माते शानदार डिजाइन बनाई जावे है। आजकल कॉपर या मेटल कोटिंग रे तारारो इस्तेमाल भी होन लाग गयो है तो सलमा रे साथ ही साथ सितारा दबका मोट टीयर कसब कसाबरो जको काम होया करे है वो इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया करे है। और सलमारे काम वास्ते ज्यादातर आपने जको कपड़ों काम में लेना चाहिए वो है सिल्क साटन या वेलवेट रो कपड़ों क्योंकि इनमें वो काम है जको वो और भी ज्यादा खिल जाया करे है और मजबूत भी रहा करे है। साथ ही साथ जरीरी बात करा तो जरीरी जकी कढ़ाई होया करे है वह धागा सू बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाई जावे है। जरीरी साड़ियां भी आवे पोशाका भी है सलवार सूट है शेरवानी है आपने हर ब्याह शादी रे मौके में देखने मिल जावेला। और जरीरे मायनी आप कई तरह रा फुलारी डिजाइन पत्यारी डिजाइन और साथ ही साथ जरीरो ही प्रकार कह सका जरदोजी है जको कामदानी वर्क है वे वीरे प्रकार में ही आया करे है और वो काम सिल्क रेशम मखमल जॉर्जेट और ऑर्गेंजा माते बहुत ही सुंदर लग गया करे।
0: बिल्कुल आज जो को वर्क है वो सदाबहार तो रहे वही है साथ ही साथ ई वर्क रे साथ ही एक ट्रेंड और अभी चल रही है वो है मुकेश वर्क रो मुकेश वर्क री ओढ़निया ले लो चाहे मुकेश वर्क री पोशाक ले लो आजकल तो आप देखा कि बंधेज रे साथ भी मुकेश वर्क करियो जावे तो जो कि पुराना टाइम में जो कि वर्क हो वो सोना चांदी या फिर सोना चांदी रे जगह चपटा तार होता बस वो काम है जो को करियो जाओ तो सबसे पहले कपड़ा ने फ्रेम पर बांधर नील या चौक सो डिजाइन बना सुई में तार पिरोर और कपड़ा सो आर पार निकाल मरोड़ एक छोटी सी गांठ या बिंदु इरे मायने बना देवे पचकाच या चिकना भाटा सो तारा ने रगड़ और चपटो बनावे और यही फूल पत्ती री डिजाइन भी आजकल बनाया करे तो आज की मुकेश वर्क री डिजाइन है बेबी बहुत ही बढ़िया लागे और आजकल आपने ओढ़नी ओढ़निया रे मायने आज की डिजाइन है देखने मिले।

0: आ बात तो ही चूंद डी रही। तो अबे बात एक डिजाइन की और कर ला, जो कपड़ा माथे ही करी जावे और बाहे पेच वर्क और पेंटिंग री कला। पेंटिंग और पेच वर्क ने जब साथे करे तो एक अलग ही लुक देवे। और पेच वर्क है जो को आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में चल रहे है, जिरे मायने पुरानी पोशाक ने दूसरी पोशाक पर ट्रांसफर करे। और बात आपा शुरुआत कलमकारी सु करा तो आंध्र प्रदेश री जकी प्राचीन कला है, जिमें बांस री तीखी कलम और प्राकृतिक रंगा री मदद सु कपड़ा पर पौराणिक कहानियां और देवता रा चित्र बनाया जावे। और अगर पेच वर्क री करा तो एप्लिक वर्क भी इन्हें कहवे और पेच वर्क भी इन्हें कहवे, जकी ओडिशा और राजस्थान रो प्रसिद्ध काम है। इरे मायने अलग अलग रंग और अलग अलग आकार रा कपड़ा का टुकड़ा ने काट एक खास या मुख्य कपड़ा माथे इन्हें सिल दियो जावे, जिसू वो कपड़ो है या वा पोशाक है बा अलग ही शाही लुक देवे। और एक और कला है जिकारो नाम है रोगन आर्ट, जका गुजरात रे कच्छ री एक दुर्लभ कला है। जिरे मायने शीतल जी जो को अरंडी रो तेल हुए और जका प्राकृतिक रंग हुए वासु एक पेस्ट बनावे और एक धातुरी एक तिल्ली आया करे विसु कपड़ा पर बिना छुया उकेरियो जावे।
1: बिल्कुल। और कोमल जी इनके साथ ही अपने अठे रंगाई छपाई री भी बहुत सारी तकनीका है, वह पुराने टाइम से ही काम में ली जा रही है। जान की ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करा तो लकड़ी रे ठप्पा सु कपड़ा पर छपाई ने ब्लॉक प्रिंटिंग कहया करे है। इनमें भी कई तरीके रा प्रिंट आपने देखने ने मिलिया करे है और भी अलग अलग रे डिजाइन और रंग संयोजन इनरे मायना देख सको हो। बगरू सांगानेरी प्रिंट अपने अठे बहुत ही नामी है और जयपुर इरो प्रसिद्ध केंद्र भी है। और यूं ही जब बाटिक प्रिंट की बात करा तो कपड़े पर मोम सू डिजाइन बना फिर रंगियो जावे है और पछे मोम ने हटा दियो जावे, जिसू सुंदर डिजाइन है जो कि उभर जाया करे है। जटे जटे मोम रहा करे वटे वटे कलर नहीं चढ़िया करे है। और इरे साथ ही इनमें मोम री जगह गेहूं रो भी बिंधन रो भी काम में लिया करे और भी कई तरीके की चीजें है जो कि काम में ली जाया करे
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और प्राकृतिक रंगा सू या ज्यामिति पैटर्न रो उपयोग कर अजरक प्रिंट भी एक कपड़ा पर रंगाई रो काम करे। इरे मायने ब्लॉक प्रिंटिंग री बहुत पुरानी कला है। साथ ही साथ जो को दाबू प्रिंट है, इमें मिट्टी और गोंद और चूना रो जो को मिश्रण हुआ है इरो उपयोग कर कपड़ा रा कुछ हिस्सा ने रंगन सू रोक्यो जावे और एक अलग प्रिंट है जो को कपड़ा ने दियो जावे। यहाँ कढ़ाई भी कई तरह री कढ़ाई भी है, जो कि कई तरह री वे जिया की कशीदाकारी है, कश्मीरी कढ़ाई है, जिरे मायने प्राकृतिक कला से जुड़ेड़ा फूल पत्ती री डिजाइना बनी जे। सृजनी कढ़ाई है जकिर में बिहारी पारंपरिक कला मानी जे। कसूती है जकि कर्नाटक री बहुत पुरानी कला है।
1: बिल्कुल। और अब बात करें राजस्थान और गुजरात री प्रसिद्ध कला बंधेज कला री, जो पूरे देश में आपरी विशेषता रे वास्ते जानी जे है। और बंधेज रो मतलब ही होया करे है बांधणो, कपड़े ने धागे सु बांध रंगने री कला है बंधेज। बंधेज री प्रक्रिया में कपड़े रो चुनाव जिनमें ज्यादातर सूती लिनन मखमल कैम्ब्रिक सिल्क या रेशमी कपड़ो लेनो चाहिए और
0: बिल्कुल।
1: इन्हें पहली धोर सुखा देनो चाहिए, जिसु रंग पक्को और चमकदार चढ़िया करे है। और पछे ही कपड़े ने प्रेस कर इरी सलवटा निकाल देवो, पछे कपड़े में गांठा लगार धागा सु बांध डिजाइन बनाई जावे है, पछे इन्हें रंगियो जावे है। और बंधेज री खासियत आ है कि इनमें अनगिनत डिजाइनर रंग संयोजन आपने देखने ने मिल जावेला। शायद ही आई वजह है कि आज इतने साल बाद भी ई कलारी लोकप्रियता आज भी लोगों के बीच में है और इरी डिमांड भी आज बहुत ही ज्यादा बनी उड़ी है। आपने अठे बीकानेर जोधपुर और जयपुर ई कलारे वास्ते खासा जानिया जा जावे है। और पारंपरिक बंधेज री साड़ियां सूट पोशाक ओढ़ना और आजकल तो शर्ट में भी जो है बंधेज चाल रियो है। और इनरे साथे साथे ही बात करा टाइड इरी इरी तो आ भी रंगाई री एक पारंपरिक तकनीक है। ये तकनीक में कपड़े ने रंग लगाने सु पहली कई तरीके सु मोड़ मरोड़ और धागा सु बांध बांध

रखियो जावे है जिसु मुड़ोड़े भाग पर रंग कोनी चढ़िया करे है और ई तरीके सु एक तरीके री डिजाइन या पैटर्न बन जावे है जिनमें आप गोलाकार ले लो या सर्पिल आकार रो या मार्बल या शिबोरी पैटर्न इनमें आपने देखने मिलिया करे है जो दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगे करे है।

0: तो अब चालता चालता देखो इतनी जानकारी तो आपा दे दी हाँ, तो अब थोड़ी सी जानकारी जो है सवाल सवाल जवाब रे माध्यम सु आपने श्रोतावा ने देवा कि किन तरीके रा फैब्रिक है जका आपने भारत में जाना जावे है और क्यों फेमस है। तो आंसू जुड़ियोड़ा एक सवाल मैं आपू करूँ और एक सवाल आप मारम सु करूँ।
1: बिल्कुल शीतल जी, आप मन बताओ कि असम में वो कौन सो सुनहरो रंग है जो को दुर्लभ रेशम है, जो को पूरी दुनिया रे मायने सिर्फ असम में पायो जावे, जिन्हें बार बार धोन सु भी विधि चमक है जो कि बढ़ती ही जावे।
0: मेरो नाम है मूंगा सिल्क, जो आपकी मजबूती और प्राकृतिक सुनहरा रंगा रे वास्ते जाने जावे है। अब आप मने बताओ कि बिहार री प्रसिद्ध कलारो नाम कई है जेरे मायने कटा फटा सूती कपड़ा ने रिपरता ने जोड़ रंगीन धागो सु रजाइया चादर जो बनाया जावे है।
1: बिल्कुल, बिनके वे सुजनी कढ़ाई जिन्हें जीआई टैग भी मिलेड़ो है। तो आप बताओ कि हिमाचल प्रदेश रो एक प्रसिद्ध रुमाल है जिरे दोनों साइड एक जेडी कढ़ाई करी जावे, जो कि दोनों साइड सु एक जी दिखे।
0: वो हो गया करे है चंबा रुमाल। और उड़ीसा री प्रसिद्ध कला जिनमें कपड़ा रे टुकड़ा ने काट र वाने एक दूजा रे ऊपर सील र सुंदर छतरियां और लालटीन बनाई जावे
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिन कहे पीपली एपली कला, जो कि कला है बापुरी री जगन्नाथ रथ यात्रा ने सजाने वास्ते प्रसिद्ध है। तो आप बताओ कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा री पारंपरिक कढ़ाई जी में पुरानी साड़ियां ने बॉर्डर सु धागा सु निकाल और कपड़ा माते जो कि है रंगीन टच सु सुंदर कलाकृतियां बनाया करे।
0: वे ने कहा करे है कांथा कढ़ाई, जीरा आजकल सूट भी मिलिया करे।

0: शोभा है बा कपड़ा सूया करे और कपड़ा री जकी असल शोभा है बा कारीगरी उकरेड़ी जकी कलाकृतियां होवे वी सूवे।
1: बिल्कुल, तो आज रो अगणगौर विशेष कार्यक्रम में मैं ही आपके साथ आपकी दो सखियां शीतल राठौड़ और कोमल राठौड़, और इन कार्यक्रम री प्रस्तुति ही राजेश लाम रोडरी और संयोजन हो मनीष सोलंकी रो
0: इनके साथ ही धीरा वो आपकी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई

0: गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले दो सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के

0: विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले

0: चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: आदमी खा रहा जज्बात की नरम छांव प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है। आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलम आरा फिल्म का यह गीत आशा भोसले की आवाज में। शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से, लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: सुनहरे रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
3: दस्त मुरली की धुन सुन आई दाते जमुना के तट पर नीरत करत उठ नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसे चंद्र तपन दिग दिग नाद दिग दिग नाद दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग द

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

0: की सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है
1: जी।
2: और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है बड़ी प्यारी सी कहानी, जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं
2: जी। हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल। आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी,
2: जो एक
1: बिल्कुल
2: गीत भी होते हैं
1: जी,
2: लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित, कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, रात भर उसे नींद न आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई।

0: हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए, तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। अरे बहू, ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी? हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
3: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
3: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
2: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
3: तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
3: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
4: क्या जाए? हरे कृष्ण।

0: अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्णा
1: हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
0: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
3: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा।
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप रे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हा?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
1: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
3: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा,
0: रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
2: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला।
2: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है।
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
2: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
2: ऐसा।
0: हरे कृष्ण।
4: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो, और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी

0: हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
1: अरे अम्मा जी, हाँ? जी तो
2: क्या हुआ, बोलो तो।
1: अरे हुआ का, बता
2: क्या बताए
1: अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
3: क्या बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
2: बिल्कुल ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
2: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
1: वो
2: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
2: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं। और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
1: इस खेल की कयद तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
2: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है। इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है। मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ,
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
2: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात।
2: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ।
1: कहते हैं जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
2: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
2: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
2: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं और इस मजबूती को में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
2: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक

0: पहुंचाते हैं उस पर विश्वास रख के कि वो गोल कर देगा।
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे
0: जी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है, जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती है। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
0: लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या
0: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम
0: अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए। तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसमें झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए। ये तो,
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड।

0: और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए, बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखे होने, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
0: बिल्कुल।
1: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हो तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
1: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सपरिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
0: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
0: बिल्कुल।
1: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो विधि एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है. तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी. मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे. उसमें अंदर ही एक जेब होता था और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे. यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे. और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे. तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था. तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती.
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है. पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है. परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है. वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे. और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में.
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं. अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें. और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है. तो विशेष ख्याल रखें. और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें. रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचे. अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे. आप एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए. और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है.
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया. मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है. क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है. ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है. और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ. अच्छा? बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा है ना. और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है. और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है. मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है. तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है और इसे इसे तलना होता है. तो

0: जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं, तो आप मोयन डालते हैं और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेलकर मोड़ा जाता है और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना उसकी रेसिपी भेजी है, तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए
0: और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना उसकी रेसिपी भेजी है, तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा,
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग।
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: विधि,
2: विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ। हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए। जिंदगी खुश रहने के लिए है और सखी सहेली सुनते रहिए,
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। अनुश्री पाठक।

Petara. पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी होती है,
1: वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होता है ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी,
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए है, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे,

0: क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है
1: जी।
0: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
1: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
0: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कन्फर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छूकर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
1: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहां पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हटके सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आते हैं जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है, कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं।

0: मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गया, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहां पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: और ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
1: पॉजिटिव
0: जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम
1: रेंज के बाहर,
0: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: जी, जी जी,
1: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
1: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
0: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
0: काला बाजार,
1: काला बाजार,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस।
0: जी।
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़ क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको

0: बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
1: जी,
0: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
1: जी।
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षण दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती है।
0: हाँ, क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
0: हाँ।
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत है।
1: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफी ने गाया और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लिजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो

0: आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस, एक है मेंटल मानसिक और एक है फिजिकल।
1: जी,
0: मेंटल में कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है आग बबूला होना।
1: जी जी।
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
1: जी जी।
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान।
1: जी।
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
1: फोबिया,
0: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है।
0: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल।
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो वाला ना,
1: सारी विषैली चीजें,
0: हाँ,
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
0: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर प्राकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंगवर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
1: जी।
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी।
0: अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ

0: हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा।
0: बैजू बावरा
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: बैजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री,

0: सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
1: सही बात है,
0: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
1: पसीना
0: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
1: लक्षण देख के
0: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
1: एक इंडिकेशन होता है,
0: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
1: आयोडीन मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
0: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
1: क्या बात है,
0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
1: मायूस
0: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ
0: रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो मौसमी फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो
0: यस,
1: क्या बात।

0: इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
1: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो चाइनीज फूड में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है,
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
0: हाँ, कम कर दीजिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
0: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं

0: साहब बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया जुबरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

की उड़ान धरती और आसमान के परे है, मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ, खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए। इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर बड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चने जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

छाया गीत में आज नक्शलाइलपुरी के नगमे थे फिल्मों के नाम, फिल्म तुम्हारे लिए।

0: फिल्म आहिस्ता आहिस्ता।
1: माना तेरी नजर में।
0: आज का चाहे गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने, बस कुछ ही पलों में।

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्यार तो होना ही था। अभी आपने इस फिल्म में आशा भोसले और उदित नारायण को सुना। अब सुनिए आशा भोसले को मोहम्मद रफी के साथ। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है SH बिहारी ने। फिल्म का नाम है कश्मीर की गली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: हम दिल दे चुके सनम, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीतकार महबूब, संगीतकार इस्माइल दरबार, आवाजें कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली पहली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब सुनिए शोले फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अब सुनिए दिल क्या करे इस फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, आवाज अलका याग्निक की।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: क्या करे। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक को सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। ये विविध
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा के पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर का।

हेलो हाय गुड इवनिंग जोधपुर वासियों। दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा जोशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर में। शाम का समय है, आसमां में लालिमा छाने को है। क्या आपके हाथ में नहीं है चाय की प्याली? मन में हो रही है ना हलचल?

या है मन बिल्कुल शांत? जी हाँ दोस्तों, ये शाम ही है जो आपके पूरे दिन की थकान को समेटे है। ये शाम ही तो है जब आप काम से लौटकर घर को जा रहे हैं। ये शाम ही तो है जब पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ मुड़ रहे हैं। ये शाम ही तो है जब घर पर एक गरम चाय की प्याली आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, क्या आप नहीं जा रहे आज घर से बाहर किसी बागीचे में टहलने? जैसा कि अमूमन कहा जाता है, चलिए आज शाम को मिलते हैं, क्या आप आज किसी ऐसी शाम के इंतजार में तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये शामें हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो इस शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपकी रेडियो बड़ी, आपकी दोस्त पूजा जोशी, आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारे से गीतों से भरी प्लेलिस्ट। तो हम बातें करेंगे और भी, लेकिन पहले सुनते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम कितना ही कुछ अच्छा कर लें, हमारे मन में विचार कितने ही अच्छे हो, हम किसी का कितना ही भला क्यों ना कर लें, वो कहते हैं ना, किसी की आउट ऑफ द वे जाकर के मदद क्यों ना कर लें, लेकिन कई दफा हमारे आसपास लोग इस तरह के होते हैं जो हमारे अच्छी बातों को तो नहीं देखते लेकिन वो ऐब जरूर गिनाते रहते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हंसना मत छोड़ना, मुस्कुराना मत छोड़ना, जीना मत छोड़ना। दुनिया का क्या है वो तो कहती रहेगी, चार लोग हैं तो बातें भी होंगी, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच जब मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं तो कितने अच्छे और कितने लुभावने लगते हैं ना। इसीलिए दोस्तों, मुस्कुराना नहीं छोड़ना है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों हम सभी के जीवन की अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने स्ट्रगल्स हैं कि नहीं। तो हमारी अपनी जो कहानी होती है उसमें कितने ही तरह के किरदार होते हैं। कुछ किरदार हमें पसंद होते हैं तो कुछ ना पसंद होते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी का वो सबसे, अपनी कहानी का वो सबसे खूबसूरत, सबसे पसंदीदा किरदार चुनिए। जी हाँ, और वही किरदार बन जाइए। सर ऊंचा रख कर बेबाकी से जी लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, उस किरदार को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। फिर देखना आपका जीवन कितना सुलझ जाएगा, कितना खूबसूरत हो जाएगा, और जीवन जीने का मजा ही दुगना हो जाएगा।

कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी, इट्स माय चैनल।

दोस्तों, हम हर बार कुछ भी काम करते हैं तो जल्दी से परिणाम की ओर देखने लगते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम तो यात्रा का अंत है, प्रयास यात्रा है। हर बार जब लगे कि परिणाम काफी नहीं है, नए प्रयास, नई दिशा और नई संभावनाएं लेकर आएंगे। किसी का जाना नई आमद का संकेत होगा, विफलता नए आयाम ढूंढने पर मजबूर करेगी, कई बार पीछे जाने पर चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी और हर बार का रुकना संकेत होगा फिर से चलने का। परिणाम तो पक्का पत्थर है दोस्तों, प्रयास गीली मिट्टी है चाक की, इसीलिए निरंतर प्रयास कर

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे ट्रिप में? अरे वाह!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कभी कभी हमारे दिल की बात कोई समझ ही नहीं पाता। हम भी कोशिश करके थक जाते हैं और एक गहरी सी चुप्पी ओढ़ लेते हैं। जी हाँ, हम नाराज जो हो जाते हैं। तो दोस्तों, तोड़ दीजिए उस चुप्पी को, क्योंकि नाराजगी को उदासी में बदलने का सिलसिला जो तोड़ना है कि नहीं, तो बस इस चुप्पी से निजात पा लीजिए। कह दीजिए जो आपके दिल में है।

दोस्तों इस समय आप बने हैं FM Sensity जोधपुर चैनल के साथ और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर अपनी रेडियो बरी पूजा जोशी के साथ। दोस्तों मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। इसलिए मन की सफाई करते रहिए और सारी नेगेटिव थॉट्स को अंदर से बाहर फेंक दीजिए क्योंकि एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए मन का स्वच्छ होना सबसे ज्यादा जरूरी है।

जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM Sun City।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कभी-कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में लेकिन क्लैरिटी नहीं होती है. सब कुछ आंखों के सामने होता है लेकिन ओझल-ओझल सा, धुंधलापन सा होता है. और जब वो धुंधलापन, वो अंधेरा जब धीरे-धीरे छटने लगता है और आपको सब कुछ साफ-साफ दिखाई देने लगता है, तो आप खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं ये सोचकर कि अब तो बहुत देर हो चुकी है. इतना लेट कैसे कुछ कर सकते हैं या कैसे किसी चीज की शुरुआत कर सकते हैं. दिशा आपके सामने है, उस दिशा की तरफ मुड़ जाइए, पलटकर मत देखिए. समय क्या हो रहा है, कितना देर हो चुका है, इसकी चिंता मत करिए. बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए. कुछ खिलाड़ी दूसरी पारी में ज्यादा अच्छा खेलते हैं. उम्र क्या है, बस एक नजरिया ही तो है, दायरा नहीं. जज्बे की कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं होती. आप किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीख सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी अपनी पहचान बना सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर कोई आपको पलटकर ये पूछता है कि इतना देरी से क्यों, पहले क्यों नहीं किया ये काम, अरे उसी उम्र में कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, तो दोस्तों आप पलट के बस यही जवाब देना कि अपने नाम के आगे लेट लगने से पहले शुरुआत तो कर दी, अब इस दिशा में मुड़ चुके हैं, सफलता असफलता बात की बातें हैं, जो होगा देखा जाएगा, पर किसी भी चीज के लिए देर नहीं होती. कहा ना कुछ खिलाड़ी दूसरी पारी में ज्यादा अच्छा खेलते हैं.

मुश्किल है तो क्या होता है लेकिन हालात ही तो ना। हाँ, बरस रही है कई रातों से, लेकिन बरसात ही ना। इस बार हंसी कम दुख ज्यादा है तो क्या है, फिर भी जज्बात ही ना। सावन भादो पतझड़ सूखा, सब मौसम अपने मानो, है मगर ऊपर वाले की सौगात ही ना। देखिए दोस्तों, जिंदगी में ऊंच नीच अच्छा बुरा हर परिस्थिति से गुजरने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। आपको सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन को चुनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि जो चीजें इतनी अपरिचित लग रही हैं या इतनी सामान्य लग रही हैं कि वो बस आपके साथ ही क्यों हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, किसी और के साथ तो नहीं हो रहा, तो वो इतनी बड़ी चीज या इतनी बड़ी

बात है ही नहीं। सब लोग किसी ना किसी पीड़ा या परेशानी से गुजर रहे हैं, तो बने रहिए, ठने रहिए, जिद पर रहिए। जिंदगी है, आप डिजर्व करते हैं खुश रहना, आपका हक बनता है।

दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर में आपका और मेरा साथ इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त, अपनी होस्ट पूजा जोशी को दीजिए इजाजत और बने रहिए एफएम सन सिटी चैनल के साथ। सुनते रहिए हमारे आगे वाले प्रोग्राम्स को और खुश रहिए, हैप्पी रहिए है।

इतना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे? मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी। इट्स माय

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। शाम के 7 बजने वाले हैं, आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज की ओर, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: ए आर रहमान और सुखविंदर सिंह का गाया देशभक्ति गीत सुना। संगीत तैयार किया था ए आर रहमान ने, बोल समीर के थे। फिल्म का नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

अभी आपने सेना पर आधारित गीत सुना, गीत संगीत स्वर था कैलाश खेर का। अब हम फौजी भाइयों को सुनवा रहे हैं राधा का संगम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मन्नारू दास की, फिल्म का नाम हीरो।

इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए, निखिल विनय का संगीतबद्ध किया और फैज अनवर का लिखा गीत, आवाज चित्रा की फिल्म का नाम तुम बिन।

ने फैज अनवर का लिखा गीत सुना। आवाज दे रही थी चित्रा सिंह। फिल्म का नाम था तुम बिन। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए बॉबी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाजों में। बोल लिखे हैं विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जब सुनिए सड़क फिल्म में अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को बोल हैं समीर के।

अभी आपने संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया सड़क फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। स्मृतियों के स्वर इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष इस उपलक्ष में दोस्तों हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनकी दुनिया में रेडियो था, या यूं कहें कि रेडियो ही उनकी दुनिया थी, या उन्होंने अपनी पूरी जो दुनिया है, अपना जो पूरा समय है वो रेडियो को ही दे दिया। तो आज भी हमारे ठीक सामने एक ऐसी ही शख्सियत बैठी है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने बरसों बरस रेडियो में काम किया और अपने आप को यूं कहें कि खपा दिया रेडियो की दुनिया में। आप हैं सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश परमार साहब। सर, आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सुनने वाले सभी साथियों को जो दूर दूर तक हमारी बात सुन रहे हैं
1: जी,
2: उन सबको मैं नमन करता हूँ और बड़ों को तो मैं पांव धो करता हूँ
1: जी,
2: और दूसरों जो मेरे साथी हैं उनको बहुत प्यार और बच्चों को स्नेह ही स्नेह।
1: तो आपने तो इतने वर्षों तक काम किया है, डिजिटल युग भी आ गया है और निजी FM चैनल्स भी आ गए हैं, आकाशवाणी अभी तक प्रासंगिक बना हुआ है, मानते हैं आप?
2: हाँ,
1: तो प्रासंगिक ही रहेगा,
2: हमेशा हमेशा बना रहेगा। हमारे गायकवाड़ साहब करके एक डीजी साहब, वो हमेशा ही कहते थे आकाशवाणी कभी मरेगा नहीं बेटे, ये हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे दूसरे चैनल हो चाहे नहीं हो, उसकी आकाशवाणी की प्रभुता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस अपनी निष्ठा के साथ जुनून के साथ काम करते रहो, तुम्हें असफलता अवश्य मिलेगी
1: जी।
2: ये उनका माँ मंत्र था और ये मंत्र मैंने घोड़ घोड़ के पिया, कारण कि मेहनत करना मेरा काम था और मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत के कारण आज तक मैं यहाँ बॉम्बे जैसे छोटे से गांव में रहता था, मैं बीकानेर जैसे स्थिति में, और सूरतगढ़ तो उससे भी छोटा था
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वहां से यहाँ तक आना और फिर बच्चों का पूरा ध्यान रखना और बच्चों के ध्यान के साथ साथ उनको आगे भी बढ़ाना है। आज बच्चे विदेशों तक चले गए हमारे, क्यों चले गए? क्योंकि आकाशवाणी की बदौलत, आज इस आकाशवाणी की बदौलत हमारा परिवार आगे बढ़ा है और हमारा परिवार दिन दुनी रात

0: इसी कदर से बढ़ता रहे और साथ साथ में आकाशवाणी की जो गरिमा है वो हमेशा बरकरार रहे। इसके बरकरार रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, हमें जान भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, वो तो आपके कार्य बताते हैं कि आप किस हद तक आकाशवाणी से प्रेम करते हैं। आप जब आकाशवाणी की दुनिया में आए, इतने साल आपने काम किया है, कोई ऐसा लम्हा आपको याद है जब आपको आपके कार्यों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा मिली हो, या कहना चाहिए आलोचना मिली हो, या भला बुरा सुनना पड़ा हो अपने उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा या श्रोताओं के द्वारा? ऐसा कोई पल याद है आपको जो हम श्रोताओं से साझा करें?
0: खट्टे मीठे पल बहुत याद है। जब मैं राजस्थान में था, जोधपुर में मेरी पोस्टिंग थी, तो जोधपुर में चौधरी भाई करके प्रोग्राम का मेरा करेक्टर था
1: जी,
0: और चौधरी भाई के नाम से मेरे को आवाज से लोग पहचानने लेते थे कि याद नहीं, अरे आवाज तो कहीं सुना भाई। मैं पूछता कहाँ सुना भाई, अरे चौधरी भाई वो तो रेडियो में आते हैं भाई, तुम चौधरी भाई कैसे हो गए, तुम तो वो तो नहीं हो। हाँ भाई नहीं हूँ भाई, माफ करना मेरे को। ऐसा कहकर मैं बात को टाल देता, मतलब जब देखता था करेक्टर जो हमारा है कितना फेमस हो चुका है। सही बात है ना, और इसी करेक्टर के मार्फत मैं अपनी बातों को उनके सामने रख देता था कि भाई ये समस्या है, इस समस्या का ऐसा समाधान होगा और इस समस्या को अपन समाधान के रूप में लें, न कि उनको समस्याओं को समस्याओं के रूप में लें। सही बात है ना,
1: मतलब जो आपका एक कैरेक्टर था चौधरी करके, आपने उसके माध्यम से लोगों के सामने एक नई सकारात्मक बातें रखी जिंदगी से।
0: मैडम उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने कुछ तो ऐसे प्रोग्राम्स किए जो कंपटीशन के प्रोग्राम थे
1: जी,
0: उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और सरकारी तंत्र से जुड़ा मैं और शिक्षा के पद से भी जुड़ा और वहां पर मैंने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए मुझे वहां पर विशेष तौर से बीकानेर में तो मुझे ऐसे काम करने के कारण प्रशंसा पत्र भी दिया गया,
1: सम्मान भी मिला,
0: सम्मान भी मिला,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रशासन के द्वारा
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे सम्मान तो मैडम हम लोगों को सबको मिलते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, सबको मिलते हैं, अच्छा लगता है मैडम।
1: कार्य का सम्मान है, आपके कार्य का सम्मान है
0: तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथी लोग जो थे उस समय में, जैसे प्रदीप है वगैरह है, आप भी थे उस समय, आप लोग जो जुनून था आप लोगों में, आप देखो जुनून की जैसे आप यहाँ तक आ गए
1: जी।
0: ये जुनून होता है काम करने का, जिसको जुनून होगा वो आगे बढ़ेगा मैडम, जुनून नहीं होगा वो ही पड़ा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: इसलिए आदमी को आगे बढ़ना है और हम लोग जो मौका मिला ना मैडम, इसको सेवा करनी है, सेवा की भावना प्रथम होनी चाहिए
1: जी, बिल्कुल।
0: तो वो सेवा करने वाले आदमी आगे बढ़ सकता है।
1: अगर मैं एक बात कहूं, मैंने चूंकि आप जैसे अधिकारियों के साथ काम किया और बहुत ऐसे अधिकारी हमें भी मिले जो जुनून की हद तक काम करते थे, डांटते भी थे और बताते भी थे कि कार्यक्रमों को कैसे किया जाता है, और उससे बहुत कुछ सीखा, उनकी डांट से सबक सीखा कि किस तरह से कार्यक्रमों में गलती नहीं होनी चाहिए। सर आपसे इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली है और इस बातचीत के साथ साथ आपकी पसंद का गीत हम जानना चाहते हैं।
0: जया भादुड़ी जी और शायद अमिताभ बच्चन जी दोनों फिल्म के अंदर काम कर रहे थे,
1: मिली
0: हाँ शायद वही फिल्म होगी, और उसके अंदर जब कैंसर हो जाता है उनको, जया भादुड़ी को, और अंत के अंदर जो वो गाना एक आता है, मैंने कहा
1: फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस पड़े,
0: अरे जिंदगी में हंसते रहो, मैं तो ये कहता हूँ, बी हैप्पी इन योर लाइफ
1: जी, बिल्कुल। आई सुनते हैं ये गीत।

0: यहाँ पर एक स्वामी जी की बात अक्सर मेरे को याद आती है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की। वो अपने उनके जो प्रवचन होते थे बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, लाखों लोग आते थे, लाखों लोग। और मैडम आपके सुनकर आपको खुशी होगी, उस सब भाइयों को भी खुशी होगी इस बात की कि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे किसी को भी।
1: जी जी।
0: और इंटरव्यू नहीं देने का कारण ये था कि सारे व्यक्तिगत अपने नाम से सब लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा उनसे निवेदन किया जाके, मैं स्वामी जी महाराज एक चीज बताइए, आपकी अच्छी बात जो गीता की है, अब कर्म निवादी का रास्ते तो हम सभी जानते हैं, एक लटर लटर शब्द हो गया हमारे लिए, परंतु इसका गुड अर्थ क्या हुआ? ये गुड अर्थ जो आपने बताया आज लाखों लोगों के बीच में, वो गुड अर्थ अगर किसी पंगु जो पांव से चल नहीं पा रहा है और जो यहाँ आपके पंडाल तक नहीं आ पा रहा है और वो घर पे सुन ले तो क्या हर्ज है आपको? नुकसान है कोई? नहीं बेटा कोई नुकसान नहीं। इधर देखो अपना इक्विपमेंट लेके रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, और पहले सबसे पहले रिकॉर्डिंग मेरी शुरू किया
1: जी,
0: हूं मैं।
1: जी।
0: आप बीकानेर के अंदर उदयराम सर दोहरे की बात बता रहा हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उस समय अपने सीनियर अनाउंसर उदय प्रमोद शर्मा जी साथ में थे,
1: प्रमोद शर्मा
0: हाँ वो साथ में थे। वो आज भी कहते हैं कि मैंने आपको वो इंटरव्यू लेते सुना है और आपकी बात तो बड़ी प्रभु बस ऐसा कहते थे। मैंने कहा नहीं मेरी कुछ नहीं है, मैंने तो सीखा है आप लोगों से, और मैं हमेशा मैडम हरेक से सीखता हूँ, यहाँ तक कि गार्ड होता है जो अपना गेट पे रहते थे ना, उनसे बातचीत करके सीखता
1: जी,
0: था मैं।
1: जी जी।
0: और सीखने में क्या हर्ज है?
1: ये आपका बड़प्पन रहा, ये आपकी महानता रही कि नहीं? सरल हृदय जो इंसान है वो कभी अपने पद को नहीं लेकर रहता, सभी की इज्जत करने के साथ ही वो आगे बढ़ता है और इसी तरह से उसको सफलता भी मिलती है।
0: ऐसी बात
1: तो परमार साहब, हम अब चलते चलाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं कि आकाशवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, अपनी सेवाओं से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हमने देखे हैं आकाशवाणी की दुनिया में, जैसे कि डिजिटल रेडियो आ गया है, न्यूज ऑन AIR ऐप आ गया है जहां से पूरे विदेशों में गांवों में हम रेडियो को सुन सकते हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब की उपस्थिति हो गई है, FM के साथ साथ पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई हैं। ये जो इतने सारे बदलाव अब रेडियो के साथ साथ हम देख रहे हैं, इनके साथ में परिवर्तन, आप इसको कैसे देखते हैं?
0: देखिए जब मैं एक बार टाटा हॉस्पिटल गया तो टाटा हॉस्पिटल में गुप्ता साहब थे, उनसे मिलने के लिए गया तो उनके स्टेनो के पास बैठा, रेडियो कौन सुनता परमार साहब आजकल? अच्छा एक बात सुनो, आपको रेडियो के ऐप मालूम है कुछ? अरे आप न्यूज कब कब सुन सकते हैं मालूम है आपको? मैं कहा अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते थे मालूम है कि अगर आप जरा सा भी न्यूज एक सुन लें बराबर ध्यान से तो मेरा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को तुम पास कर सकते हो भाई, क्योंकि जीके की जो बातें हैं, जनरल नॉलेज की जो बातें हैं वो पूरी पूरी समाचारों में आती है। और हमारा समाचार जगत का मैंने एक उसको ऐप दिया और उसके ऐप उसे डाउनलोड किया और मैंने कहा जैसे सुनिए आप, सुनाया उसको मैंने, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं था। आप बुरे इसलिए तो करते हैं हमारे लोगों की कि भाई मुझे मालूम नहीं था। उस ऐप के अंदर कोई भी न्यूज को कभी भी सुन सकते हैं, कल की न्यूज को आज सुन सकते हैं, सवेरे की न्यूज को एक घंटे बाद सुन सकते हैं। आप बताइए इससे बड़ा और किस चैनल के अंदर है मुझे बताइए, कोई भी चैनल ऐसा नहीं दिखता।
1: और 24 घंटे समाचार चलते हैं आप किसी विविध भाषाओं में आप।
0: और मैडम इसके साथ साथ में मैं बता रहा हूँ ना कि जिस मुख्य समाचार को आप दोबारा सुनना चाहते हैं वो आप नहीं सुन सकते कहीं पे भी, तो हमारे यहाँ पे वो दोबारा सुन सकते हैं आप, वो उस ऐप के अंदर पूरी चीजें, ये ऐप की बातें हैं, डिजिटल की बातें हैं, तो ये सब बातें तभी संभव होगी जबकि हम लोग उसमें इंटरेस्ट लें। और आप लोग जो भी आज काम कर रहे हैं डिजिटल सेवा के तहत वो लोगों को बताएं, भरपूर बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं, इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे ऐप्स हैं और इस ऐप्स को हम इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं और आप इनको सुने
1: जी।
0: और बड़े बड़े अधिकारी बने और बड़े बड़े अधिकारी बन के देश की सेवा करें, बस मेरा एक ही एक निवेदन है
1: जी।
0: एक बच्चा हमारे फैमिली का, जैसे एक हमारे कालूराम जी थे शायद बीकानेर के ना, उनका बच्चा जो IAS बना ना, इतनी खुशी हुई मुझको, इतनी खुशी हुई कि आज हमारे एक ड्यूटी ऑफिसर के और बाद में अधिकारी भी बन गए, है ना
1: डीआर मीणा जी।
0: हाँ तो अधिकारी भी बन गए, तो अधिकारी बनने के बाद में वो चीजों से मालूम पड़ी, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा।

0: हमारे परिवार के जो बच्चे आगे पढ़े आगे गए तो वो किस कारण से गए? वो इस आकाशवाणी की बदौलत गए, मैं आपसे सही कहता हूँ। तो आकाशवाणी के माध्यम से जो चीजें हम लोगों ने सीखी वो हमारे को जानते थे कि इनको पापा को जो जुनून है ना, पागलपन से बड़ा जुनून है।
1: जी बिल्कुल,
0: ये बात
1: और वही जुनून आज आपको हमारे सामने ले आया। आज विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, आपने अपनी अनमोल बातें हमारे साथ साझा की और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं परमार साहब।
0: मैं आपका और सुनने वाले सभी साथियों का बहुत हृदय से नमन करता हूँ उन सबको और अभिनंदन करता हूँ। और ये हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए हमसे, आपको नित नई बातें आपको मिलेगी, क्या खेती में, क्या आप समाचारों में, और क्या अपने जीवन में, उन बातों को उतार लीजिए, आपका जीवन ऐसा निर्मल बन जाएगा। घमंड आपके पास में नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। बिना घमंड का आदमी कितना बड़ा होता है आपको मालूम है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और दोस्तों, स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में थे सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय लवीश परमार साहब। हमने उनसे बातचीत की आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में। और बस आज इतना ही। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें अब इजाजत। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का पहला भाग सुनवा रहे हैं। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: विक्रम,
1: ऐसे ही मैंने सोचा पूछ लूं, आज शाम को तो आ रहे हो ना?
0: कहाँ?
1: क्यों भाई, आज कमला के यहाँ?
0: कमला के यहाँ? वहाँ क्या है भाई?
1: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है ना?
0: मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इनविटेशन आया नहीं। व्हाट्स द ओकेजन?
1: अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
0: होगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
1: चलो मैंने बता दिया, काफी है, अब आ जाओ। बहुत से पुराने यार दोस्त मिलेंगे, खूब हंगामा रहेगा। 6:30 बजे के बाद किसी वक्त भी।
0: मुश्किल है यार।
1: फॉर्मल इनविटेशन के बिना जाना शान के खिलाफ है क्या?
0: क्या बात करते हो यार, कमला के यहाँ पार्टी हो तो फॉर्मेलिटी कैसी?
1: मुझे यकीन है उसने तुम्हें इनविटेशन कार्ड जरूर भेजा होगा, हो सकता है डाक में कहीं रह गया।
0: नहीं नहीं, ये बात नहीं, इनविटेशन की ऐसी कोई बात नहीं। यूं भी कमला से मिले कितनी देर हो गई है मुझे, कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे, हो सकता है साल ही गुजर चुका हो। मैं खुद कई बार सोच चुका हूँ कि चल के उसे मिलाऊं, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता यार। देखो ना, 6 बज भी चुके हैं और मैं अभी तक ऑफिस में ही बैठा हूँ।
1: लेकिन वहाँ तो 6:30 बजे के बाद पहुँचना है यार।
0: मैं जरूर आ जाता शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन कर देते। अब शाम को मुझे एक और पार्टी में जाना है, वहाँ भी बस शक्ल दिखा के भागूंगा। 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है मुझे, हेड ऑफिस से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, फिर जाने उनके साथ कितनी देर लग जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: देख लो वक्त मिले तो आ जाना।
0: भाई मुश्किल ही है, फिर भी कोशिश करूंगा, मगर प्लीज कमला से कुछ ना कहना।
1: नहीं नहीं,
0: थैंक्स फॉर कॉलिंग,
1: बाय बाय।
0: बाय बाय। क्या लिखा था?
2: कॉपी ऑफ विच इज
0: बीइंग एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली एटसेट्रा एटसेट्रा।
2: नेक्स्ट सर?
0: नहीं बस, बाकी ये खत कल सुबह आकर करेंगे। थैंक यू, बस जाकर जल्द टाइप कर लो, मुझे जाना है।
2: यस सर, इन ए मिनट।

0: सुनो, आज की डाक से मेरा कोई पर्सनल खत तो नहीं आया?
1: नो सर, डाक तो मैंने सब आपको दे दी थी। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, शायद मेरे
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं होगा। मैं कोई खास खत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो देख लो शाम की डाक में शायद।
1: यस सर।
0: विक्रम? यस सर। जी हाँ जी हाँ, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जी हाँ जी हाँ, आई शेल एक्सप्लेन टू हिम सर। यस सर, वेरी वेल सर। कागज और बैग मेरी गाड़ी में रख दो।
2: यस सर।
1: आई एम सॉरी सर, आपका कोई पर्सनल लेटर नहीं है।
0: ओह, इट्स ऑल राइट। खत टाइप हो गया?
1: यस सर।
0: ये लो, बाकी ये खत ऐसे ही यहीं छोड़ दो, सुबह डिक्टेट करवा दूंगा।
1: राइट सर।
0: राइट
1: सर। सर, आप अपना पेन भूल गए थे।
0: थैंक यू। मैं ग्रीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ?
1: नो थैंक यू सर, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है।
0: अच्छी बात है।
1: गुड नाइट सर।
0: गुड नाइट।
3: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है भाई। अरे, उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है। तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है। तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
1: विक्रम, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आन पहुँचे?
0: क्यों कमला, मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था क्या?
1: लेकिन मेरा आज यहाँ आने का बिल्कुल इरादा नहीं।
0: तो फिर तुम यहाँ कैसे आई?
1: कॉलेज से घर पहुँची तो बहुत क्यों ना सुना था, सोचो एक आध ऐसे तैयार कर लो, कॉफी निकाल कर बैठी तो अचानक याद आया कल विनीता का बर्थडे है। तुम जानो, ये मॉडर्न लड़कियां बर्थडे पर प्रेजेंट नहीं दिया जाए तो अनकल्चर की डिग्री दे डालती।
0: तो तुम विनीता के लिए प्रेजेंट खरीदने निकली?
1: झूलने निकली थी प्रेजेंट, मिल गए तो अब मिल ही गए हो तो कॉफी के लिए तो पूछ लो।
0: हाँ हाँ चलो, कहाँ चली?
1: सुना है ग्रीन लाइट में कॉफी के साथ साथ म्यूजिक मुफ्त मिलता है।
0: जी नहीं, म्यूजिक की कीमत वो कॉफी में ही लगा लेते हैं।
1: भाई संजूस होते जा रहे हो। हाँ भाई, मैं तुम्हारी वो तो नहीं हूँ ना। अच्छा चलो, कॉफी के पैसे अपने अपने।
0: तुम्हें डायलॉग सुनने का बहुत शौक है क्या? तुम चाहती हो मैं रोज रोज दिल पे हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं?
1: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो चले ग्रीन लाइट।
0: चलो ना, लेकिन पहले अपना प्रेजेंट तो खरीद लो, दुकानें बंद हो जाएंगी।
1: प्रेजेंट खरीदने का आइडिया मैंने फिलहाल ड्रॉप कर दिया।
0: पैसे कम पड़ गए होंगे।
1: पैसे कम पड़ गए होंगे, आज ही पॉकेट मनी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है।
0: फिर तो ग्रीन लाइट का पूरा बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा।
1: तुम्हें शर्म नहीं आएगी?
0: बिल्कुल नहीं, तुमसे भला मुझे क्या शर्म आएगी?
1: मुझसे नहीं, वेटर से तो आएगी।
0: वहाँ तो बिल मैं ही पे करूँगा, तुम पैसे मुझे पहले से ही पकड़ा देगा।
1: बड़े ठीक हो।
0: देख लो, तुम कॉलेज से सीधी घर चली गई, ये भी ना सोचा कि मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा। फिर भी तुम्हें ढूंढ ही लिया।
1: जी हाँ, पूरे 10 मिनट गेट पर इंतजार किया था जाने से पहले।
0: 10 मिनट क्या बहुत होते हैं?
1: कभी कभी ऐसे लगता है जैसे 10 बरस बीत गए। फिर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पहुंचकर सोना सोना क्यों लग रहा था? इतनी सखी बातें अगर तुम समझ सकते होते तो अपना बेड़ा न पार सकता। चलो हमारे
0: I'm sorry, कमला, आज का प्रैक्टिकल बहुत लंबा था, लेकिन खत्म करते ही तुम्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ।
1: घर गए थे?
0: ना ना ना ना, मेरे दिल ने कहा तुम घर पर नहीं होगी, बल्कि जरूर कनॉट प्लेस में शॉपिंग करती हुई
1: मिलोगी। दिल ना हुआ, रडार हो गया।
0: जब मिलने की ख्वाहिश हो तो दिल की आवाज रडार से भी बढ़ के काम करती है। देख लो, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कुदरती तौर पर खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी सांसों की लहरें मेरे कदमों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाती हैं।
1: सुनो, ये आजकल के मॉडर्न राइटर्स ने कोई नई तरह के डायलॉग नहीं लिखे?
0: खुद ही तुम कहती हो कि मैं
1: अब चलकर कॉफी पिलाओ, कितनी देर हो गई है, मैंने कहा था अंधेरा होने से पहले घर लौट।
0: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन अम्माओं को अपनी बेटियों की इतनी फिक्र क्यों खाए रहती है। अगर बाहर से लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
1: तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा रहता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार भूल जाता है। फिर माँ बेचारी क्या करे, बेटी तो जाने उनके लिए पराया धन है जिसे उसके मालिक के हवाले की

0: बिना उनको चैन नहीं पड़ता।
1: तुम किसकी अमानत हो?
0: तुम ही नहीं मानो।
1: तुम बता दो।
0: मुझे भी नहीं मालूम।
1: ये कैसे हो सकता है?
0: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। कहा है तुम्हारा ग्रीन लाइट?
1: वो रहा।
0: चलो चलकर कॉफी पिए।
1: तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
0: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम।
1: तुम्हारी मर्जी।
0: सुनो, इनके यहाँ वो गाना है।
1: कौन सा?
0: छोड़ो, तुम्हें गाना सुनकर भी क्या समझ आएगी?
1: बस छोड़ गई मैदान।
0: क्या मतलब?
1: एक सवाल का सीधा जवाब देते हुए घबरा क्यों गई?
0: Shut up.
2: गुड इवनिंग अंकल।
3: ओ गुड इवनिंग विक्रम।
2: हेलो आंटी।
4: अच्छे हो विक्की।
2: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आंटी।
3: अरे भाई, ये बधाई बधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
4: किवी बहुत नाराज है तुमसे। सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो। वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
2: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ। अरे कहाँ है सब लोग?
4: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ। मैं चलूं।
2: नहीं आंटी, आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ।
3: He is a smart boy.
4: बहुत। देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है। 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो।
3: अरे भाई, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा हूँ।
4: हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
3: मैंने गौर नहीं किया।
4: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है, जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना। आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
3: देख रहा हूँ।
4: किवी इज़ अ लकी गर्ल।

यादों की परछाइयां, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनिएगा कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

0: खोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चित्रलोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मीट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की आवाजों में वन नाइट स्टैंड फिल्म के गाने से। यह है फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड। संगीत तैयार किया है मीट ब्रॉस ने, बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया गीत फिल्म है साया। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है MM करीम ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए सैयद कादरी का लिखा गीत, प्रीतम का संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज है केके की।

खामोशी द म्यूजिकल। लीजिए इस फिल्म में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति को मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कविता कृष्णमूर्ति को खामोशी द म्यूजिकल में सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आजा नचले फिल्म से है। आवाज दे रहे हैं राहत फतेह अली खां, संगीत तैयार किया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप सैनी के।

हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शिल्पधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भोरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म

0: पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
7: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: Against the assessment of
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी

0: के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा

0: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आरजू फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

दूसरा आदमी, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया और जयदेव का संगीतबद्ध किया तुम्हारे लिए फिल्म का गीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मोहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

लता मंगेशकर को सुना। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1900

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक विको वज्रदंती। विको वज्रदंती मजेदार ही नहीं, असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: विको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
3: विको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: मजेदार नहीं, असरदार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।

रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में, सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

रात ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत, आती है तो आ जाए मौत बेशक, कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

एक मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।